हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाणा साहिब आते होर गुरुद्वारिया गुरु धामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार आते सेवा संभाल दा दान खालसा जिन बख्शो हे निमानियां दे मान नेतानियां दे तान नेतियां दी ओट तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावना पवित्र स्थान सच खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सचे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नूं अपने दारों घरों सिखी सिद्धक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनिया आप जी दे हाजूर कड़ा प्रसादी देग हाजिर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे वंद होवना नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरबत

माला पहला दया पासू तो सुचकन दी सत बट एक नेम जी का है ता पांडे खत ना हो टूटे ना मर लगे ना हो जड़े ना जाए कंस मान स्नान का जो गल चले पाए चौंकर मुना

साहिब हरदयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो परे मनो चंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैदा जाए सी ता दरगे पैदा जाए सी।

हुने तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवन कर रहे सी। साड़ी स्टूडियोज़ दी कड़ी मुताबक इस वेले सवेर दे 6 बज रहे ने। हुण तो बस कुछ ही पलां च तुसी साड़ी दिल्ली केंद्र तो सुनोगे हिंदी च समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करें।

0: ने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनाधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोके गेको, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका की बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ अते DTHD आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही ते न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियोज़ दी घड़ी मुताबक 6:05 हो रहे ने। हुन सुनो आज दा ज्ञान अमृत।

जीवन प्रेम है। ते जद मनुख दूसरियां दी भलाई करना छड़ दिंदा है तां उसकी समाजिक अते अध्यात्मिक मौत हो जाती है।

निरंकार दा नाम जिन्ना भी जपिए उन्ना ही मन नूं सकून मिलता है। इस दी भगति विच जो आनंद है वह शब्दों विच बयान नहीं किया जा सकता। आओ इसे प्यार ते शरदा नाल अगे वधिए। तुसी सर्वन कर रहे हो भगती संगीत का प्रोग्राम आराधना।

हुने तुसे सुन रहे से प्रोग्राम खेती बाड़ी मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन मानस कान प्रोग्राम च तुसी सर्वन करोगे रामचरित मानस दे लड़ीवार पाठ दी 192वीं कड़ी।

अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो। ये कैसा उपचार है भला? कैकेयी का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था, विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना ये है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकेयी को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को ये भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया।

आओ हुन तुहानू जानकारी दे दिए आज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम आदि सवेरे 7:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम सोनी सवेर 8:40 ते पंजाबी फिल्म म्यूजिक का प्रोग्राम महक पंजाब ते पेश किया जाएगा। सवेरे 9:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम एक कलाकार, इस विच अज गल की जाएगी फिल्म प्रोड्यूसर ते डायरेक्टर जीपी सिप्पी दे फिल्म ते गीता बारे। 9:30 गजला पेश कीतियां जानगियां। 10:02 ते तुसी साडा फोन इन बेस्ड प्रोग्राम सुनोगे हलो फरमाइश। 11:05 ते व्हाट्सएप मैसेज बेस्ड प्रोग्राम धमक जलंधर पेंदी पेश कीता जाएगा। दोपहर 12:05 ते समा रहेगा प्रोग्राम वसदे वेड़े दा। इस प्रोग्राम च अज तुसी रेडियो डॉक्टर च अधरंग ते लक्षण ते फिजियोथेरेपी राही इलाज विषय ते दित्ती जानकारी सुनोगे ते इस उते जानकारी देंगे डॉक्टर मनीषा उल्टन सोई ते कथा लोक ते नवा ताजमहल बारे दित्ती जानकारी सुनोगे। फौजी वीरानी प्रोग्राम दोपहर 1:15 पेश कीता जावेगा। बाद दोपहर 2:30 प्रोग्राम रंगली धरती विच। आज तुसी मिठा सिंह बडावली दे लोक गीत सुनोगे। साड़ी दूजी सभा च शाम 4:02 ते तुसी सुनोगे पंजाबी फिल्म संगीत। शाम 4:03 ते तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सर्वन करोगे। शाम 5:30 सर्वन करोगे गुरुवाणी विचार। देहाती प्रोग्राम होवेगा शाम 6:03 ते इस च अज नवे बाग दी संभाल विषय ते जानकारी दित्ती जावेगी ते जानकारी देंगे डॉक्टर टी एस चाहल।

7 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम किसान वाणी। इस विच अज किसान समाचार, मौसम दा हाल, मंडियां दे भाव बारे जानकारी दित्ती जावेगी। शाम 8 बजे तुसी साडा इवनिंग शो सुनोगे जिंदगी हसीन है। रात 9 बजे तुसी सुनोगे न्यूज एट 9। रात 9:15 बजे पेश किया जाएगा स्पॉटलाइट। ये दोनों प्रोग्राम साडे दिल्ली केंद्र तो प्रसारित किए जाएंगे। उस तो बाद रात 10:02 ते तुसी सुनोगे शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुर साधना। इस प्रोग्राम च आज तुसी कलाकार पंडित विश्व मोहन पट तो गिटार वादन सुनोगे, राग हेमत सुनोगे। रात 10:30 बजे प्रोग्राम सरगम पेश किया जाएगा। सुहासन अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा हुण तो बस कुछ ही पलां च तुसी साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे संस्कृत च समाचार।

0: च उद्यमानां प्रोत्साहनाय मिलित्वा कार्यं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। श्रीगोयलः बलं दत्तवान् यत् महिला नेतृत्वाधीनेभ्यः उद्यमेभ्यः अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे अवसराणां लाभं स्वीकर्तुं स्वकीयां सहभागितां च वर्धयितुम् आवश्यकं सहकार्यं मञ्चश्च प्रदातव्यौ। ग्रामीण विकास मंत्रालयस्य अंतर्गतम् भूमि संसाधन विभागः अद्य डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 3.0 इत्यस्य कार्यान्वयन संबद्धान् दिग्निर्देशान् प्रकाशयिष्यति। मंत्रालयेन सूचितं यत् आगामी DILRMP 3.0 इत्येतत् 50.65 लाख करोड़ रुपयाणां अनुमानित वित्त व्ययेन केंद्रीय क्षेत्रीय योजना रूपेण कार्यान्वितं भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन ओडिसायाः पृथक् पृथक् स्थलेषु अद्य प्रबलाति प्रबल वृष्टेः संभावनां दृष्ट्वा रक्तवर्ण परा संचेतना प्रसारिता अस्ति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडे स्टूडियोज दी कड़ी मुताबक सवेर दे 7 बज रहे ने। हुन पेश ने अज दियां मुख खबरां। केंद्रीय मंत्रिमंडल दी 10,700 करोड़ रुपए तो वध दी कुल लागत वाली 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट मंजूरी दे दिती है। प्रधानमंत्री ने कहा है इन्हां फैसलों नाल मुसाफरां दी आवाजाई ते संपर्क बेहतर होंगे। भारत ते श्रीलंका ने दोवां देशां दी भलाई लई काम करन वास्ते अपनी वचनबद्धता दी पुष्टि कीती है। माली खुफिया इकाई दे डायरेक्टर ने 15 वर्चुअल डिजिटल संपत्तियां सेवा प्रोवाइडर्स नू मनी लॉन्ड्रिंग डिजिटल रोकथाम कानून 2002 दी पालना ना करन करके नोटिस जारी कीता है। पंजाब दे व्यापार ते सनअत मंत्री अमन अरोड़ा ने दुबई च इन्वेस्ट पंजाब समागम नू संबोधन कीता। मंत्री ने प्रवासी पंजाबियां समेत UAE दे कारोबारी नू पंजाब विच निवेश करन दा सद्दा दित्ता है। पंजाब दे मुख चोण अधिकारी आनंदता मित्रा ने 18 साल दी उम्र तो दी नौजवानां नू नवें वोटरां वजो रजिस्टर करन लई अपील कीती। कीनिया दे सिख्या मंत्रालय दे एक उच्च पदरी वफद ने कल पंजाब अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे मनुखी अधिकार कमीशन दा दौरा कीता। भारतीय रेलवे वल्लों मुसाफिरां दी सहूलत अते रेल संपर्क नूं बेहतर बनाउण दे उद्देश नाल लुधियाणा जाखल पैसेंजर ट्रेन नूं जिंद तक वधाउण दा फैसला कीता गया है। सरहदी सुरक्षा बल वल्लों भलके 11 सितंबर नूं जलंधर विच अपनी फ्रंटियर सदर मुकाम विखे पेंशन अदालत लाई जा रही है अते पैरालंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह ते विश्व दे पहले नंबर दी खिडारन शीतल देवी ने विश्व तीर अंदाजी पैरा सीरीज पड़ाव 3 च आपो अपने मुकाबलियां च सोने दे तमगे जीते। एसन अज दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही ते न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियोज़ दी कड़ी मुताबक सवेर दे 7:03 हो रहे ने। हुन पेशे प्रोग्राम सोनी सवेर।

0: करना चाहेंगे कि वो हमारे साथ आए, राउंड ग्लास की इस मुहिम में जुड़े और बूटे लगाने किसी एक संस्था है, किसी एक महकमे की जिम्मेवारी तो है, पर इसके साथ साथ हमारे पूरे आम जनता की भी जिम्मेवारी है कि बूटे को लगाएं और देख रेख करें। और मैं आशा करता हूं कि अगर बूटे कोई भी लगाए गए हैं मेरे द्वारा, चाहे अलग अलग कई संस्था लगा रही है, कोई आम जनता उसमें एक लीटर पानी भी डाल देते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपयोगी होगी उसको जिंदा रखने में, मदद करने में। तो हम सारी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि वो लोग साथ में आए जुड़े।
1: जी अमरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जी चंडीगढ़ का मौसम। इस अलावा अमृतसर 34.2 घट तो घट 27.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। लुधियाना 34 डिग्री सेल्सियस घट तो घट 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जी तापमान। पटियाला 35.9 डिग्री वध तो वध तापमान रहा घट तो घट 27 डिग्री दर्ज कर लिया गया। सो यह है जी साडे मौसम का मिजाज। ते तुहाडे हुण मन का मिजाज की कह रहे हैं जी, 8 बज चुके ने तकरीबन नाश्ता अज की बनाउणा है ते की खाणा है अपने घरदिआं नूं दसो ते फिर उहनां दे नाल मदद भी कराओ, क्योंकि कहिंदे सुखी जीवन का राज ही है जेकर सारा परिवार रल के एक दूजे की मदद करे। सोचते की हो जाओ जी, हैल्प करो अपने परिवार वालियां दी, अपने घर के मैंबरां दी, जिहड़े भी घर के काम ने सारे करो ते फिर आपो अपने कम्मां नूं भी निकलो। मैनूं भी हुण जाण दिओ, अगले वीरवार फिर आवांगे नवी जानकारी दे नाल। फिलहाल दिओ इजाजत, नमस्कार।
1: हुण तुसीं सुन रहे सी प्रोग्राम सोनी सवेर, मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते इह आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण तों बस कुछ ही पलां च तुसीं साडी दिल्ली केंद्र

0: समाचार प्रभात 8:15 तुसी सुनोगे मॉर्निंग न्यूज ते 8:30 तुसी सुनोगे खबरां पंजाबी च।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्यजीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प
4: योजना उन नौजवानों के

0: ताकि आप जब 60 साल के होंगे
1: आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े,
0: आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास पे बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
5: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
6: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
4: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 trillion से बढ़ाकर $30 trillion करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूर्या से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूर्या को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्य बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमरीका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
7: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए।

0: गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुँचा। एक रिपोर्ट।
2: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने डीएनए किट, अर्भिक्रमक और डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है। वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस यह सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष। मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मॉनसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज

प्रोग्राम महक पंजाब दी तुसी सुन रहे हो ते हुनी तुसी सुनिया फिल्म असानू मान वतना दा हरभजन मान ते जसपिंदर नरूला दे आवाज़ च एक गीत ते अगला गीत हुन थानू प्रोग्राम च सुनान जा रहे हैं फिल्म कैरी ऑन जट्टा च गिप्पी गरेवाल दी आवाज़ च एक गीत इंजॉय करो।

प्रोग्राम महक पंजाब दी तुसे सुन रहे हो ते इस प्रोग्राम दा आखिरी गीत फिल्म लावा फेरे चूं हैप्पी राय कोटी दी आवाज़ च लो जी इंजॉय करो ये गीत।

हुने तुसी सुन रहे से प्रोग्राम महक पंजाब दी मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडे स्टूडियोज़ दी कड़ी मुताबक सवेर दे 9 बज रहे ने। हुन पेश ने अज दियां मुख खबरां।

प्रोग्राम एक कलाकार इस आज जीपी सिंह जीपी सिप्पी जो कि फिल्म प्रोड्यूसर ते डायरेक्टर सन आज उना दे फिल्मा उना दे गीता बारे असी गल करांगे। फिल्मी दुनिया विच कुछ जड़िया शख्सियतां ने वह अजिहा हुंदिया ने जो सिर्फ फिल्मा नहीं बनांदिया सगों अपने काम नाल एक यादगार दौर से रचांदिया ने। आज दे साडे प्रोग्राम एक कलाकार विच असी गल करांगे एक अजिहे मशहूर फिल्मकार दी जिन्हां ने निर्माता ते निर्देशक वजों हिंदी सिनेमा नू कई यादगार फिल्मा अते बेहद खूबसूरत गीत दिते। जी हाँ, असी गल कर रहे हैं जी पी सिप्पी जी दी। उना दी फिल्मी सफर दी, उना दिया फिल्मा दी अते उना फिल्मा दी आज असी गल करांगे जिहड़ियां अज भी लोग दिलों पसंद करते ने। उना दी फिल्मी सफर 50वीं दहाके तो शुरू होया। उन्होंने सजा, शहनशाह, मरीन ड्राइव, श्रीमती 420, चंद्रकांता, 12 ओ क्लॉक वर्गिया फिल्मा बनाईया। इस तो बाद उन्हां दियां फिल्मा ने बॉक्स ऑफिस दे नाल नाल लोकां दे दिलां विच भी अपनी खास थां बनाई। मेरे सनम,

सीता और गीता या बहुत सारिया फिल्मां जिहड़ियां ने अज भी लोग पसंद करते ने। ते जेकर असी गल करिए शोले फिल्म दी, ते जदों इस फिल्म दा नाम आंदा है, इस दे किरदार, इस दे डायलॉग अते इस दे गीत याद आ जांदे ने। ते प्रोग्राम एक कलाकार च आओ फिर शोले फिल्म दा एक गीत सुनदे हां किशोर कुमार ते मना डे दी आवाज़ च।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
7: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स दे ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही ते न्यूज़ ऑन एयर ऐप ते भी सुन सकते हो। हुन पेश ने गज़लां, गज़लां जो कि साडे दिल नूं छू जांदियां ने, जो कि साडे दिल दे अनकहे जिहड़े जज्बात ने उहनां नूं कह जांदियां ने। ते कई बार मन च कुछ अजिहे जज्बात हुंदे ने जो असी बयान नहीं कर सकते, वह भी ये गज़लां बड़े सोहने तरीके नाल साडी गल पहुँचा जांदियां ने। ते गज़लां दी इस महफिल च सब तो पहली गज़ल चंदन दास जी दी, आओ सुनिए।

होने तुसी सुन रहे सी चंदन दास दी आवाज़ च। बहुत खूबसूरत गज़ल। गज़लां दा जिहड़ा सफ़र है ना, वो अक्सर दिल दियाँ उन्हां गल्लां तक लै जांदा है जो असी कह नहीं पाते। कदे दुआ बन के, कदे याद बन के, ते कदे किसी खूबसूरत एहसास वांग गज़ल जिहड़ी है ना, वो दिल नूं छू जांदी है। तो फिर आओ इसे नरम जे एहसास नाल सुनदे हां अगली गज़ल गुलाम अली साहब दी आवाज़।

जगजीत सिंह जी की आवाज़ च तुसी सुनी दिल नू छू लैण वाली एक गज़ल। गज़लां जिहड़ियां ने ना वो दिल च वस जांदियां ने क्योंकि वो साडे अनकहे चले जज्बात ने उन्हां नू कह जांदे ने। तो इस दे नाल ही हुण अगली जिहड़ी गज़ल है, क्योंकि कई बार जिंदगी च साडे करीब बहुत लोग हुंदे ने पर गल सिर्फ है कि असी उन्हां नू पहचानना किवें है, ते जेकर सानू मिल जान ते असी उन्हां नू अपनी जिंदगी विच संभालना किवें है। बिल्कुल जी, यही खूबसूरत जज्बात ते इन्हां ही एहसासां नू अपनी खूबसूरत आवाज़ दिती है पंकज उदास जी ने। आओ सुनदे हां उन्हां दी आवाज़ च ए दिल नू छू लैण वाली गज़ल।

दुबई च इनवेस्ट पंजाब समागम नूं संबोधन कीता। मंत्री ने प्रवासी पंजाबियों समेत यूएई दे कारोबारां नूं पंजाब विच निवेश करन दा सदा दित्ता। पंजाब दे मुख चोण अधिकारी आनंदता मित्रा ने 18 साल की उम्र के नौजवानों नूं नवे वोटरां वजों रजिस्टर करन लई अपील कीती। कीनिया दे सिख्या मंत्रालय दे एक उच्च पदरी वफद ने कल पंजाब अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे मनुखी अधिकार कमिशन दा दौरा कीता। सरहदी सुरक्षा बल वल्लों भलके 11 सितंबर नूं जलंधर विच अपने फ्रंटियर सदर मुकाम विखे पेंशन अदालत लाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरान संस्था ने परमाणु नियमों की पालना ना करन करके ईरान का मामला सुरक्षा कौंसल नूं भेजा है। भारत ने अहमदाबाद विच विश्व तीरअंदाजी पैरा सीरीज विच 4 सोने के 3 चांदी ते 8 कांसी दे तमगियां समेत कुल 15 तमगे जीते। अते हाकी विच भारत की मर्दा की टीम जूनियर हाकी एशिया कप के सैमीफाइनल विच अते औरतां की टीम क्वार्टर फाइनल विच पहुंच गई है। ऐसन अज दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 854 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स आप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियोज़ दी कड़ी मुताबक 10:03 हो रहे ने। हुन पेश करन जा रहे हैं प्रोग्राम हलो फरमाइश। प्रोग्राम हलो फरमाइश दे विच तुसी शिरकत कर सकते हो। उहदे लई तुसी नंबर डायल करना है 0181-3342-173। ते इस प्रोग्राम च मैं तुहाडी दोस्त शुभता रहांगी जी तुहाडे नाल। ते तुहाडा सारिआं दा इस प्रोग्राम च स्वागत है। तुसी नंबर डायल करो, प्रोग्राम च साडे तक पहुंचण दी कोशिश करो ते नाल दे नाल सुनो फिल्म झूम बराबर झूम। ते फिल्म चो राहत फतेह अली खान ते महालक्ष्मी येर दी आवाज़ च गीत इंजॉय करो।

0: वाह जी वाह, प्रोग्राम हलो फरमाइश इस गीत ने जड़े और रौनक लगाई ते आगाज हो चुका है प्रोग्राम हलो फरमाइश का। तो आओ जानते हैं फिर प्रोग्राम च सब तो पहली फरमाइश कौन लेके आए ने। हलो
1: हलो, सत श्री अकाल मैडम।
0: सत श्री अकाल जी। हाँ जी, कौन बोल रहे ने जी?
1: मैं बोल रहा जी मंडी गोविंदगढ़ तो, भूपिंदर सिंह हंस।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम च।
1: थैंक यू मैडम।
0: हाँ जी, होर की हाल चाल ने?
1: ठीक है मैडम, बहुत बढ़िया। मैडम मैं मैनू 65 इयर्स 65 साल हो गए जी रेडियो सुनते ने।
0: ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यानी कि तुसी काफी लंबे समय तो जुड़े हुए हो आकाशवाणी रेडियो ना।
1: जी मैडम, 5 साल दी उम्र तो रेडियो सुनने आ।
0: वाह जी वाह। हाँ। कितना पुराना नाता है जेड़ा आज तक जारी है। उस दे नाल ही तुसी फिर बहुत एक ऐसी कह सकते हैं एक काफी लंबा सफर जड़ा होता है कीता रेडियो दे नाल।
1: हाँ मैडम, वो टूपा वाले रेडियो होंदे सी।
0: हाँ जी,
1: उदों दा मैं सुनदा आ रहा ते आकाशवाणी जलंधर तो भी बहुत चिर दा जुड़िया होया जी। काफी समय तो मैं गुरबाणी सुनदा हुंना सवेरे
0: ठीक है जी फिर आज फरमाइश की है केड़ा गीत सुनोगे।
1: आज मैडम मैं धर्मेंद्र जी ते अपने वहीदा रहमान दी फिल्म है मन की आंखें।
0: ठीक है,
1: ते ओदा गीत सुनना चाहुंदा जी रफी साहब ते लता जी दी आवाज च। चला भी आ आने वाले आजा, तेरी याद सताए, यादों का जरों का कहीं भूल ना जाए।
0: ठीक है जी, असि जरूर पूरी करदे हां तुहाडी फरमाइश ते असि यही उम्मीद यही दुआ करदे हां कि तुसी जुड़े रहो रेडियो दे नाल ते रेडियो भी तुहानू खुशियां जिहड़ियां दिंदा रहे।
1: थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू जी। लो जी, इन्हां दी फरमाइश असीं पूरी करदे हां, तुहाडी फरमाइश भी पूरी करनी है। प्रोग्राम शुरू होया है तो तुसीं नंबर डायल करदे रहो, तुहाडियां फरमाइशां पूरियां हुंदियां रहिणगियां। 0181 2312 173। फिलहाल इंजॉय करो गीत।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: प्रोग्राम हलो फरमाइश आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रसारित कीता जा रहा है, ते आओ जानदे आ हुन प्रोग्राम च अगली फरमाइश कौन लेके आए ने। हलो
2: हेलो मैडम जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, हाँ जी, कौन बोल रहे जी?
2: मैडम जी मैं पॉल बोलदा, सराबा नगर जलंधर तो जी।
1: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम च।
2: मेहरबानी, शुक्रिया तुहाडा भी, धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया तुहाडी पेशकारी है प्रोग्राम।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी। फिर केड़ा गीत सुनना अज तुहाडी कॉल लगी है ते?
2: गीत मैडम सुना दो, फिल्म दा नाम है होली आई रे।
1: ठीक है,
2: गीत दे बोल है मेरी तमन्ना की तकदीर तुम सवार दो।
1: ठीक है जी, जरूर पूरी कर दे तुहाडी फरमाइश, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करन लई।
2: मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद।
1: लो जी, इन्हां दी फरमाइश असीं पूरी करदे आं। मुकेश दी आवाज़ च एंजॉय करो गीत।

0: मुकेश दी आवाज़ च तुसी गीत इंजॉय कर रहे से फिल्म होली आ रही जो ते आओ जानते हैं प्रोग्राम च हुण अगली फरमाइश कौन लेके आए ने। हेलो
1: हाँ जी नमस्कार बेटा।
0: नमस्कार जी। हाँ जी कौन बोल रहे जी?
1: बेटा जी मैं शाम तिरासी तो सरोज कुमारी बोल रही हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा तो प्रोग्राम च।
1: बेटा मैं बड़ी खुशी है मेरा पहली बार फोन लगा।
0: बहुत सानू भी बहुत खुशी है साड़ी तुहाडे नाल गल हो रही है तुहाडी। जेकर पहली बार कॉल लगी तो फिर तो अज तुहाडा भी लकी डे हो गया।
1: हां जी हां जी।
0: तुसी सुनदे हो प्रोग्राम? काफी लंबे समय तो जुड़े हो।
1: बेटा मैं मेरी 77 साल दी है। मैं तो 5-7 साल दी सी जब तो सुनदी।
0: वाह जी वाह। बहुत मेनू
1: सारे प्रोग्रामां दा शुरू तो
0: मेनू बहुत खुशी हुंदी है जदों इस तरह साडे लिसनर्स कहंदे ने कि असीं कई सालां तों जुड़े आ ते तुहाडे किन्नी तब्दीली लिआया होवेगा ना तुसीं किन्ने चेंजेस भी देखे होणगे।
1: हां जी हां जी बहुत ज्यादा बेटा बहुत ज्यादा।
0: हां जी ते कुछ तुसीं एक्सपीरियंस शेयर कर

0: दोस्त फिल्म का गीत तुसी इंजॉय कर रहे से प्रोग्राम हालू फरमाइश मैं तुहाड़ी दोस्त शुभिता जी तुहाडे नाल ते आओ जानदे आ हुण प्रोग्राम च अगली फरमाइश कौन लेके आए ने। हैलो
1: हैलो सत
0: श्री अकाल जी। हां जी कौन बोल रहे ने जी?
1: मैं मोहन सिंह पिंड पंगाला तो बोल रहा हूं, जिला फाजिलका तहसील बौर जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम च तुहाडा।
1: धन्यवाद जी।
0: किन्ने दिन बाद कॉल लगी है?
1: 10-15 दिन हो गए मैडम जी लगी कॉल।
0: ठीक है जी, केड़ा गीत सुनोगे? ठीक है जी, जरूर पूरी कर दे। तुम्हारी फरमाइश बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए।
1: धन्यवाद जी मैडम जी।
0: धन्यवाद जी। दो रास्ते फिल्म चो रफी साहब की आवाज़ इंजॉय करो ये गीत।

0: रफ़ी साहब की आवाज़ से इंजॉय कर रहे से जी फिल्म दो रास्ते दाए गीत। आओ जान दे हूँ प्रोग्राम च लास्ट कॉलर केड़े ने। हेलो
1: हाँ जी
0: नमस्कार जी। हेलो
1: हाँ जी नमस्कार मैडम जी।
0: हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी कौन बोल रहे ने जी?
1: अशोक पिंड साबू वाले तो।
0: बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च तुहाडा।
1: ठीक
0: है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।

0: स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
1: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
2: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धर्मपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज, सते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। साडे स्रोते वेव्स ऐप राही भी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते ने। ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ ਏਅਰ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

मनजोत कौर, जोबनप्रीत सिंह, शुक्रिया, और तमक जलंधर पेंदी च अलीका तहसील डबवाली तो सुनेहा आया जी, रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत, सरबजीत, रानी, सोनू, रजनी होर दा। और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुँचया तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी भामिका बाणी थांदी। ये पहुँचे कितों ने? लो जी, गगनदीप जी सोच रहे हैं कि सब तो पहले मैं लिखिया सी अपना नाम, पर तुसी सज्जे हाथ लिखिया होया ना। लो, सब तो पहले गगनदीप थांदी, उस तो बाद बाकियां दे नाम। ये पहुँचे कितों ने जी? पिंड डाकखाना टोरोवाल, तहसील बलाचौर, जिला नवांशहर, पंजाब तो। शुक्रिया जी सारे डॉक्टर जड़े ने अपना कीमती समा निकाल के सानू सुनेहे भेजते हो जी, तहे दिल तो शुक्रिया। पिंड बिल्लीमार जलालदाबाद तो साढ़े कोल पहुँचे ने, पिंड बिल्लीमार जलालाबाद तो प्रेम खुराना, परवीन, अलीशा, अरमान, राकेश, ममता, अनन्या और अनुष्का। बठिंडा रोड मंडी डाबवाली तो राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लक्की, तान्या। और जिला रोपड़ पिंड पक्कू माजरा ननुआ तो सुरेंद्र सिंह, कुलवंत, सुखजोत, भुपिंदर कौर, मनजोत कौर। तमक जलंधर पेंदीच अगला सुनेहा राम सिंह टेलर, लक्ष्मण सिंह, लो जी राम, लक्ष्मण, कुलजिंदर, मनप्रीत, जसप्रीत, गुणराजवीर सिंह, शुक्रिया जी। अगला सुनेहा साढ़े कोल मिलिया जी पिंड चंदमारी तो मंगत राम, जगदीश, संदीप मिड्डा, ममता रानी, अभिषेक मिड्डा ते दिव्या दा। प्रोग्राम च अगला सुनेहा सुखदेव सिंह, नरिंदर कौर, सन्नी, मन्नी, काका, जनक नगर, जलंधर तो। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र तो सोपान ताइडे, वसंतराव भोजने, पी एस नहावकर और मोहन करांगले। चौंक बत्तियां वाला जिला फतेहगढ़ साहब तो बलविंदर बिल्ला माधोपुरी, राजकौर, ज्योति, गोल्डी, बब्बू टिमाणा, यूएसए, रामलाल खरोड़ा, सारा माधोपुरी परिवार। आकाशवाणी जलंधर बड़े ही पक्के पुराने स्रोते साढ़े, चिट्ठियां भी पाते ने, फोन इन प्रोग्राम च भी आते ने, ते व्हाट्सएप मैसेज दे प्रोग्राम च भी हाजिर होंदे ने। क्या ही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सहारनपुर तो साढ़े बहुत ही सोहनिया चिट्ठियां पाने वाले स्रोते चंदन नगर सहारनपुर तो आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग, शुक्रिया। और सुनेहा भी बहुत ही सोहना होंदा है। अगला सुनेहा प्रोग्राम ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड तो। और अस्तुपुरा जिला मऊ तो मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज, गाजीपुर तो आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद, धन्यवाद। लो जी धन्यवाद तुहाडा जी, अपना कीमती समा निकाल के तुसी सानू मैसेज भेजा है। और प्रोग्राम च अगला सुनेहा साढ़े तक पहुँचाया जी आर पॉल ते सारा ही पॉल परिवार सराभा नगर जलंधर तो। और फाजिलका पंजाब तो भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल, लाडी खेड़ा, शालनी खेड़ा, टिवानशी, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक, सारा ही खेड़ा परिवार अपने सुनेहे नाल पहुँच चुका है। और तुहाड़े सारयां दी जिहड़ी रली मिली पसंद है ना, प्रीत हरपाल दी आवाज़ च गीत सुनन दी है। आओ फिर रल के सुनते हैं ते गीत दा मजा लैंदे हां।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
3: Women, they open their bank accounts.
4: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी

0: किया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
1: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
2: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से

0: दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 तारीख है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक गिरकर 74,722, जबकि निफ्टी 21 अंक गिरकर 23,411 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वस्ते वेड़े।

0: नमस्कार। वसदे वीडियो प्रोग्राम सुन रहे तमाम प्यारे स्रोतियों का मीनू वालों बहुत बहुत स्वागत
1: जी। ते पूनम वालों भी प्यार भरा नमस्कार। मीनू जी तुहानू भी नमस्कार। की हाल चाल ने?
0: मैं बहुत वधिया। पूनम तुसी दसो ठीक ठाक हो?
1: बिल्कुल ठीक हाँ जी। वैसे कहंदे ने मनोचिकित्सक कि जदों असीं कहंदे ने कि हाल चाल सारे ठीक ने, असीं चेहरे ते मुस्कुराहट जदों रखदे हां तां जदों कई वारी कुछ अणबण भी जिंदगी विच चल रही हुंदी है, कुछ निराशा भी चल रही हुंदी है, तो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जांदी है, क्योंकि साडा दिमाग ये समझ लैंदा है, एक्सैप्ट कर लैंदा है कि सब कुछ ठीक है।
0: बिल्कुल पूनम जी, तुसी ठीक हो दा किन्ना महत्व है साडी जिंदगी पर असी इस नू समझ नहीं पा रहे हैं। किसी दे मन च की चल रहा है इस नू समझण दी शुरुआत किसी नू ए पुछना कि तुसी ठीक हो, सब कुछ ठीक ठाक है। वैसे कदे तुसी सोचे कि जिंदगी किन्नी सोहनी है? सवेर दी पहली किरण तो लैके शाम दी ठंडी हवा तक साडे आले दुआले किन्नियां ही छोटियां छोटियां खुशियां खिड़ियां होईयां ने। मां दी आवाज़ विच प्यार, पिता दी चुप विच जड़ा फिक्र है, दोस्त दी हसी दे विच अपनापन, बच्चे दी मुस्कान विच मासूमियत। हाँ, जिंदगी विच मुश्किलां भी आउंदियां ने, कदे असी हार जाने आ ते सानू कदे लोकां तों दूर होना पैंदा, कई तरह दियां निराशावां साडे जिंदगी दे विच दिमाग दे विच चलदियां रहिंदियां ने, पर मुश्किल समां पूरी जिंदगी नहीं है।
1: बिल्कुल जी, ये जिंदगी दी जो फिलोसफी है इसनू समझना बहुत जरूरी है, बहुत डूंगी फिलोसफी है। वैसे गल मोटे तौर पर यह है कि साडा दृष्टिकोण जिहड़ा है ना वो किस तरह का, इससे साडी जिंदगी निर्भर करती है। जेकर साडा दृष्टिकोण पॉजिटिव है तो सब कुछ आसान हो जाता है। इस दे उल्ट जेकर साडी जिंदगी सब कुछ आसान भी चल रहा ना, तो दृष्टिकोण नैगेटिव है तो असं अपने आप ही जिंदगी भी खराब कर लेंगे। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੇਕਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਜੱਜ ਕੀਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ

0: जी, कथालोक प्रोग्राम तहत असी कहानी सुनी नवा ताजमहल।
1: बिल्कुल जी, कहानी जड़ियाँ ने वो जिंदगी दियाँ बहुत सारिया चीज़ों को बयान कर दिया ने। ये सिर्फ शब्दों का जोड़ नहीं होंगे, कहानियाँ तो जिंदगी दे वो पन्ने ने जिन्हां विच साड़ियाँ खुशियाँ दुख सुख ने ते हारां जित्तां लुकियां होंदियां ने।
0: बिल्कुल सही कहा तुसीं। ते ए सिलसिला असीं हर हफ्ते लैके हाज़र हुंदे आं आकाशवाणी ते खजाने चों, जो पुरानियां रिकॉर्डिंग्स ने साडे कोल ओह लैके हाज़र हुंदे। ते इस खूबसूरत सिलसिले तों बाद हुण प्रोग्राम च इक गीत सुन लईए।
1: जी जरूर।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमार के कृषि मंत्री मिननोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
3: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
1: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिल्ली पुलिस ने 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ये आदेश जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें ये संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसे हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी

व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 19 सितंबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में

कोशिश से इनकार करता रहा है। कच्चे तेल की कीमत कल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 74,869 जबकि निफ्टी 27 अंक बढ़कर 23,459 पर रहा। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। आओ तुहानू जानकारी दे दईए अज रात तक प्रसारित किते जाण वाले प्रोग्राम ते उहनां दे प्रसारण समय दी। हुण तो थोड़ी देर बाद 1:10 ते तुसी प्रादेशिक खबरां सुणोगे। 1:15 तो लैके 2:15 तक प्रोग्राम सुणोगे फौजी वीरां लई। इस विच खबरां अपने निर्धारित समय ते प्रसारित कीतियां जाणगियां। बाद दोपहर 2:30 लोक गीतां दे प्रोग्राम रंगली धरती तहत अज तुसी मिठा सिंह बडावली दे गाए लोक गीत सुणोगे। दूजी सभा विच 4:00 दीआं मुख खबरां तो बाद 4:02 ते आनंद माणोगे प्रोग्राम पंजाबी फिल्म संगीत दा। शाम 4:30 तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तों शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करोगे ते शाम 5:30 सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। देहाती प्रोग्राम दा समा रहेगा शाम 6:30। अज इस विच कम दीआं गल्लां, मंडियां दे भाअ, इस तों इलावा नवें बागां दी संभाल, इस बारे जानकारी देणगे डॉक्टर TS चहल। इस तों इलावा कल दे प्रोग्राम मौसम दा हाल ते गीत संगीत वी सुणाया जाएगा। सत्त वजे किसान वाणी सुनोगे। अज इस विच खेती संदेश, किसान समाचार, मंडियां दे भाव दसे जाणगे। इस तों इलावा पशु पालन मेला, इस बारे जानकारी देणगे डॉक्टर जसविंदर सिंह। सत्त वज के 40 मिनट समा रहेगा समाचार दर्शन दा। 7:45 ते तुसी आबशार प्रोग्राम दा आनंद माणोगे। रात 8:00 जिंदगी दे फलसफिया ते आधारित प्रोग्राम पेश कीता जाएगा जिंदगी हसीन है। 6:30 दिल्ली केंद्र तो तुसी सुनोगे 8:45 ते समाचार संध्या, 9:00 News@9, 9:15 स्पॉटलाइट, 9:30 कंट्री वाइड, 9:45 ते इनसाइट्स। 10:02 ते तुसी शास्त्रीय संगीत दा प्रोग्राम सुनोगे सुर साधना। अज इस विच पंडित विश्व मोहन भट्ट, इन्हां दा गिटार वादन सुनोगे राग हेमंत विच। रात 10:30 तुसी सरगम प्रोग्राम दा आनंद माणोगे। DTH दी पंजाबी प्रसारण सेवा दे जरिए दिने 3:00 तुसी सुनोगे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां ते रात 11:10

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। दोपहर दे 1:10 हो रहे ने। कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत तुम मिले फिल्म चो लिया गया। आवाज़ जावेद अली दी। इस गीत नु लिखिया सैयद कादरी ने और संगीत निर्देशक ने प्रीतम।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: लाओ जी, अज तुहानू दसांगा वायरल ना होण दे तरीके।
3: ओ लोकी तां वायरल होण दे तरीके दसदे आ, ते तू वायरल ना होण दा?
2: सोशल मीडिया ते वायरल होण नालों भी

0: ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਮਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 130 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀਲਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मुश्तरका ज़रई तहकीक टेक्नोलॉजी और इख्तरा के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने की खातिर मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के अपने हम मनसबों के साथ दोतरफा मीटिंगें की हैं। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेसिस ने जच्चा बच्चा की सेहत देखभाल के सिलसिले में भारत की नुमाया हुसूलियाबियों की सताइश की है। उन्होंने तिमोर लेस्ते में सेहत के मरकजी वजीर जेपी नड्डा से मुलाकात की। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। क्रिकेट में आज शाम दुबई में खवातीन एशिया के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा और यूएस ओपन में आज मर्दों के सिंगल्स का सेमीफाइनल खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के अपने हम मनसबों के साथ आला सतही दोतरफा मीटिंगें की। नई दिल्ली में ज़राअत और जंगलात से मुतालिक नवें आसियान भारत वजारती मीटिंग के मौके पर कल ये मीटिंगें हुई। मलेशिया के ज़राअत और खुराक की यकीनी फराहमी के वजीर मोहम्मद बिन साबू के साथ मुलाकात के दौरान जनाब चौहान ने मालूमात, महारत और बेहतरीन तौर तरीकों के तबादले की अहमियत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने मुश्तरका ज़रई तहकीक टेक्नोलॉजी और इख्तरा के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने पर भी दिलचस्पी का इजहार किया। इस दौरान जनाब चौहान ने म्यांमार के ज़राअत के वजीर मिननांग के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने कहा कि ज़राअत और उससे वाबस्ता शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने की खातिर दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमतनामे आखिरी मरहले में हैं। आलमी सेहत तंजीम WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेसिस ने तिमोर लेस्ते के दिल्ली में जुनूब मशरकी एशिया के लिए WHO की इलाकाई कमेटी के 79वें इजलास के मौके पर सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। डॉक्टर टेड्रोस ने खासतौर से जच्चा बच्चा की सेहत और गैर मुतअद्दी बीमारियों से निमटने के सिलसिले में सेहत के मामले में भारत की नुमाया हुसूलियाबियों की सताइश की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए भारत ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और आम कैंसर के सिलसिले में स्क्रीनिंग को मुस्तहकम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की आशा वर्कर सेहत की देखभाल की एक और ताकतवर मिसाल हैं, जो जहां लोग हैं वहां पहुंचती हैं और माओं और बच्चों को हमल से लेकर बाद तक मदद फराहम करती हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि टीकाकारी में तौसी और इदारा जाती जच्चगी में इजाफे से जच्चा बच्चा अमवात में खातिरखा कमी आई है। ब्रिक्स समिट 2026 से पहले दिल्ली पुलिस ने बढ़ती हुई सिक्योरिटी तश्वीश के मद्देनजर इस माह की 14 तारीख तक आज से कौमी राजधानी में ड्रोन उड़ाने और मुख्तलिफ दीगर छोटे फजाई प्लेटफॉर्म्स पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज कर दी है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार ने समिट के लिए सिक्योरिटी बंदोबस्त के एक हिस्से के तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 के तहत ये अहकाम जारी किए हैं। ये पाबंदी पीर के रोज तक जारी रहेगी। तमिलनाडु में मदुरान ताकम और धारापुरम रिजर्व असेंबली हलकों का जिमनी चुनाव 6 अक्टूबर को होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जा रहा है। कागजात नामजदगी इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 19 सितंबर है। इधर DMK पार्टी ने दोनों हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव अहमियत का हामिल है, क्योंकि असेंबली इंतखाबात के बाद इत्तेहाद बदल गया है। TVK यानी तमिलगा वेत्री कड़गम की जेरे क्यादत इत्तेहाद को सेक्युलर सोशल

0: जस्टिस विक्ट्री अलायंस का नाम दिया गया है और कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और एमडीएमके जैसी पार्टियां उसकी नई इत्तेहादी पार्टियां हैं जो पहले डीएमके इत्तेहाद में शामिल थीं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके मुताबिक ईरान जंग नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद तक जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि खाम तेल की कीमतें इससे कबल नीचे नहीं आएंगी। जनाब ट्रंप ने कहा कि वो समझते हैं कि इन इंतखाबात के बाद जंग फौरी तौर पर रुक जाएगी। उन्होंने अपने इस दावे के बारे में शवाहिद पेश नहीं किए कि ईरान इन इंतखाबात को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। 7 महीने से जारी इस जंग ने खाम तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया है और ट्रंप की मंजूरी की दर्जाबंदी को मुतासिर किया है, जिसके सबब रिपब्लिकन इस जंग को खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। जुलाई के बाद से कल पहली मर्तबा खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल पर थी। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज के लिए उड़ीसा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने अगले 3 से 4 रोज के दौरान आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इस माह की 15 तारीख तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। बिहार में कई नदियों की आबी सतह नीचे आने की वजह से सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है। बचाव और राहत कार्य की कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक और बागमती नदियों की पानी की सतह नीचे आ गई है, जिसके सबब सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है। बचाव और राहत कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर और अरवल समेत 14 अजला में 40 लाख से ज्यादा अफराद इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं। राहती कैंप खाने का सामान, तिब्बी सामान और मदद और दीगर अशिया फराहम कर रहे हैं। सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि तकरीबन 700 देही सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, जिससे सड़क कनेक्टिविटी मुतासिर हुई है। सड़कों की तामीर के वजीर इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने अफसरान से सड़कों पर करीबी नजर रखने को कहा है और जैसे ही पानी की सतह नीचे होती है इन सड़कों की मरम्मत करने के अहकाम दिए हैं। निधि श्री की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एक मुकम्मल 270 रुकनी रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऐलान किया है। रियासती सदर सामिक भट्टाचार्य की हिदायत के तहत वजीर आला शुभेंदु अधिकारी लिस्ट में सरी फहरिस्त हैं और उन्हें तमलुक तंजीमी जिले के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा तालीम के मरकजी वजीर ममलिकत सुकांता मजुमदार को साउथ दिनाजपुर की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर ममलिकत को बोनगांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत ने सैलाब से मुतासरा नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद बढ़ा दी है। 35 टन इमदादी सामान के साथ भारतीय फजाइया का 8वां हवाई जहाज कल काठमांडू में उतरा। उधर नेपाल में अचानक सैलाब आने से मुतासरा इलाकों में बचाव कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसमें रासोवा के मकाम पर वाकई टनल भी शामिल है, जहां भारतीय एहलकारों की टीम तलाश और बचाव की कार्रवाई में नेपाल की फौज के साथ मिलकर काम कर रही है। क्रिकेट में दुबई में खवातीन एशिया कप के सेमीफाइनल मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। भारत टूर्नामेंट में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा। हरमनप्रीत कौर की टीम ने थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान को आसानी के साथ हराकर सभी 3 ग्रुप मैच जीते हैं। ग्रुप बी में बांग्लादेश श्रीलंका के बाद दूसरे मकाम पर है। भारत ने बांग्लादेश के साथ 24 टी20 मैचों में से 21 मैच जीते हैं और भारत की टीम पिछले 8 मैचों में बांग्लादेश के खिलाफ कोई मैच नहीं हारी है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ एशिया कप में 2018 में जीत हासिल की थी, जब उसने भारत को हराकर खिताब अपने नाम किया था। यूएस ओपन टेनिस में मर्दों के सिंगल सेमीफाइनल में 2 अमरीकी खिलाड़ियों बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो के दरमियान मुकाबला होगा। क्वार्टर फाइनल में 8वें नंबर के खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के सनसनीखेज मुकाबले में पिछली बार के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हरा दिया, जबकि टियाफो ने अपने हमवतन एलेक्सिस माइकलसन को शिकस्त दी। शेल्टन और टियाफो दोनों ही अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इधर खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में कल पिछली बार की चैंपियन आरियाना सबालिंका का मुकाबला 3रे नंबर की खिलाड़ी जेसिका पेगोला से होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मुश्तरका ज़रई तहकीक, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने की खातिर मलेशिया, तिमोर लेस्ते,

0: और म्यांमार के अपने हममनसबों के साथ दोतरफा मीटिंगें की हैं। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेसिस ने जच्चा बच्चा की सेहत देखभाल के सिलसिले में भारत की नुमाया हसूलियाबियों की सताइश की है और उन्हें तिमोर लेस्ते में सेहत के मरकजी वजीर जेपी नड्डा से मुलाकात की। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज उड़ीसा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और क्रिकेट में आज शाम दुबई में खवातीन एशिया के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
2: अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: आज तक इस योजना नाल 9,50,00,000 तो ज्यादा लाभपात्री जुड़ चुके हैं। कि तुसी भी 18 to 40 साल की उम्र के हो तो मासिक अटल पेंशन समेत योजना के 3 गारंटेड लाभों की जानकारी लिए अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
5: हेलो,
6: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
7: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। फौजी वीरो, खबरां तो बाद फिर हाजिर होए हां कुछ होर फिल्मी गीतां दे नाल। लो सुनो यस बॉस फिल्म दा गीत। आवाजां कुमार सानू और अलका याग्निक दिया, गीतकार ने जावेद अख्तर और संगीतकार ने जतिन ललित।

फौजी वीरो तुहाड़े नजर कर रही हां, फिर तेरी कहानी याद आई। फिल्म आवाज साधना सरगम दी, संगीतकार ने अन्नू मलिक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठक बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमार के कृषि मंत्री मिन्नोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली वार्षिक फिनटेक सम्मेलनों में से एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण मुंबई में चल रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय, आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा है। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारे

0: NewsOn EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
2: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, वीआईपी और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दो दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ और चुनावी साक्षरता क्लब ईएलसी के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
3: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमिलगा वित्तीय कषगम टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमार विल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंतकम से पारंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीद्वार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क

0: टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निधिश्री।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनिता विलियम से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सोईचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधुसिदार सुप्रिया और रोशनी एंद ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़,

मिठा सिंह बंडालवी की आवाज च हुणे तुसीं सुन रहे सी राणी सुंदरा। आहुन सुंदिया इन्हां दी आवाज च जानी चोर।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: रंगली धरती प्रोग्राम आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो पेश किया जा रहा है। आज तुसी मिठा सिंह बंडालवी दे गाए लोक गीत सुन रहे हो। आओ हुण सुनदे हां इन्हां दी आवाज़ च मिर्ज़ा।

0: सानू इजाजत दो। नमस्कार।
1: DTH की आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। हुण दोपहर के 3 बज रहे ने। पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां।

pensando num taco de amor, cabrão. किसी ने कहा है कि वक्त दा हार पन्ना अज भावें धुंधला लगे पर यकीन रखो जो अज तुहाडी समझ तो परे है कल उही तुहाडी किस्मत होवेगा। जिंदगी दा सब तो सोहना पन्ना सब तो सोहना अध्याय बन जाएगा क्योंकि परमात्मा दा परमात्मा दी योजना परमात्मा दी जिहड़ी प्लानिंग है उस ते भरोसा रखो क्योंकि परमात्मा दी भरोसा ही सब तो वड्डी आस्था है। जिंदगी एक बार मिलती है तो इस जिंदगी नूं खुल के जियो हस के जियो। तो इस नाल ही प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं प्रोग्राम चिट्ठिया मिठिया की जिहड़ा कि तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम है। तो साढ़े स्रोतियों नूं बेसब्री दे नाल इस प्रोग्राम का इंतजार रहिंदा है। तो मैं तुहाडी होस्ट आर जे जसविंदर कौर तुहाडा सब का स्वागत करते हाँ। तो शुरू करते हाँ अपने इस प्रोग्राम की चिट्ठिया की शुरुआत करते हाँ। देखते हैं साढ़े को पहले चिट्ठिया किड़िया आईया ने जी। पिंड रायपुर डब्बा पंजाब तो फौजी मक्खण सिंह बूटा बल्ली शनी सनी और बाकी सारा परिवार नेड़े गगर हाजीपुर शहर तो मामा केहल मोहन चिंटू राम मामा मामी गुरमीत मासी सुदेश कुमारी रुलिया पिंड इस्लाम वाला जिला फाजिलका तो चिट्ठी लिख रहा सोन लाल राठी ओम प्रकाश राठी शगन लाल राठी पोत्री हनु राठी लवकुश वर्मा मनदीप सिंह गोड़ कंचन कंजन बिरक विक्रम बिरक कुलदीप ढिंगरा पिंड कुड़ियाणा तो बाबू सिंह महीने वाला छत्तरपाल सिंह खंगूड़ा गुरमीत सिंह वीरक पिंड कमाल वाला रणजीत कौर भट्टी बोहड़ सिंह भट्टी ते काका भट्टी ते इन्होंने कहा जी सानू कोई भी पंजाबी गीत सुना दिओ। इस दे नाल ही साडे कोल अगली चिट्ठी पहुंची है पिंड नकेरिया नेड़े मंडी रोड़ा वाले तो कश्मीर सिंह करनावल सुखा करनावल सुखचरण सिंह बराड़ ढाणी मत्था सिंह चढ़त वीर बराड़ अमानत बराड़ अनमोल सहजप्रीत रहमत खुशप्रीत ते राणा हलवाई पिंड चकपखी तो ते लो जी इन्हां सारियां दी रली मिली फरमाइश ते सुनदे हां सतिंदर सरताज दी आवाज दे विच ये गीत।

प्रोग्राम चल रहा है जी चिट्ठियां मिठियां ते साडे कोल हुण अगलियां चिट्ठियां पहुंचियां जी पिंड तेजा मोहड़ी तो मोहड़ी अंबाला तो बंसी लाल संधू ते पोतरा कबीर जैसवीर संधू पोतरियां वरनीत ते पवनीत कौर संधू ते पूरा संधू परिवार। अगली चिट्ठी साडे कोल आई है रावर करनाल तो ज्ञान भूषण शर्मा सोमनाथ कालिया अपरा सिटी तो रूप लाल नाहर पंच सुभाष पंच सोमा ते अमरजीत पंग अंबा प्रधान परमिंदर राजा इन्होंने कहा जी कोई भी पंजाबी गीत सुना दो सानू। मुहम्मदपुर सोतर ढाणी रतिया तो चिट्ठी लिख रहा जीवन सिंह बुक शंटी बुक सिमरन बुक कौशल्या राणी गुरशिंदर बुक बब्बू बुक कुलदीप बुक कीरत बुक भूषण खेड़ा जशन बुक ते पूरा बुक परिवार इन्होंने कहा जी हरजीत हरमन का कोई भी गीत सुना दो तो आप फरमाइश पहले पूरी कर चुके हैं जी। छत्तीसगढ़ तो सानू चिट्ठी लिख रहा दतरेगी तो भागवत वर्मा लवई तो गुलाबदास मानीपुरी लक्ष्मण लच्छनपुर तो विश्वनाथ साहू ते चर डोंगरी पिपरिया तो दुर्गा राम साहू ते इन्हां सारिआं दी रली मिली फरमाइश ते तुहानूं सुनाउण जा रही हां अमरिंदर गिल दी आवाज़ दे विच इह गीत।

जीत सिंह, कुलदीप सिंह, गुरसेवक सिंह ते पूरा लिखारी सभा दे मैंबर चिट्ठी लिख रहे हैं जी। ये पिंड कुड़ियाणा तो चिट्ठी लिख रहा सानू नछत्तर सिद्धू, प्रकाश सिद्धू बेटा उन्हां दा, गुरसाहिब सिद्धू पोतरा, अदेश्वर सिद्धू पड़ोता, दीपा सेठ ते दोस्त, उन्होंने अपने दोस्तों वालों भी यह जी सानू कोई भी पंजाबी गीत सुना दिओ। दोस्तों ने कहो जी अपनी चिट्ठी आप लिखो ते असी अपनी फरमाइश भेजी है, पर फिर भी तुहाडा शुक्रिया चिट्ठी लिखण दे लई। पिंड कैरो जिला तरन तारण पंजाब तो गुंडरशन लाल चलोत्रा, सुनीता, रजनी, आकाशदीप अनहद और पोतरा गुरशबद सिंह, डॉक्टर बनवारी जयपाल, बिमला जयपाल, सोनू जयपाल, ममता जयपाल, मोक्ष, दिशा, सुशांत, विक्रम जयपाल, रायन तो लिख रहा सानू चिट्ठी। पिंड आजमवाला तहसील फाजिलका, सोन सिंह बूक, निशान सिंह बूक, सीरत कौर, कीरत कौर, दादी जसवंत कौर, अमर लाल पोस्टमैन, रिश्तेदार सुरेंद्र कौर बूक, बलविंदर कौर बूक, बलदेव सिंह, चक कंधे शाह नेड़े पिंड फिरोजपुर तो। आओ सुनते हैं जी असी इन्हों सार फरमाइश से रोशन प्रिंस के गुरलेज अख्तर की आवाज़ के पंजाबी गीत।

प्रोग्राम चल रहा जी चिट्ठियां मिठियां ते स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक प्रोग्राम खत्म होने वाल जा रहा है ते जल्दी जल्दी साडा पता नोट कर लो ताकि साडे जिहड़े नवे स्रोते हुंदे ने जिन्होंने प्रोग्राम हुण सुनना शुरू किया है जी वो साडा पता नोट कर लो जी। प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां मारफत स्टेशन डायरैक्टर आकाशवाणी जलंधर ते साडा पिन कोड है जी 144001 ते सानू अपना नाम ते पता ते अपने फेवरेट सिंगर दा नाम साफ साफ लिख के सानू भेजो ते इस दे नाल ही साडे कोल अगलियां चिट्ठियां पहुंचियां हैं जी। सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा रितिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह ठाकुर डॉक्टर अमनदीप कालका तो शुभ चंद्र बजाज साहिल बिट्टा बजाज ताली

प्रोग्राम पंजाबी फिल्म संगीत दा आखरी गीत तुहाड़े नजर कर रही हां यारी जट दी फिल्म चो लिया आवाज सविता साथी दी और गीत तुहाड़े रेडियो सेट ते

पट्टी खोल महिवाल ने पट दसे ते पट पट सुन अखना जाए पट्टी हो पिट पिट के सोनी बेहोश होई के कौन बने तो कौन बनाए पट्टी होश आई

अपना धर्म है जुग जुगे आप अपना धर्म है शोध देखो वेद पुराना शोध देखो।

सुखम आपह स्थूला, लकी न जाई नानक लीला। कथन मुताबक करते के गुण वर्णन नहीं किते जा सकते, उस दे बारे ता जानिया ही नहीं जा सकता। उस बारे कुछ कहना किस तरह संभव है? इस संसार विच सर्वव्यापी प्रभु सागर दी न्याई है। निक्की जी मछली वर्गा जीव किस तरह प्रभु दा अंत पा सकता है? हे प्रभु, मैं असमर्थ हां। प्रभु, तू ते सारे पासे व्यापक है, मैं तेरे तो परां जीवित नहीं रह सकता। जिमें मछली नूं पता नहीं हुंदा मछेरा कौन है अते जाल किथे है, हे प्रभु, मैं भी अनजान हर दुख वेले तैनूं ही चेते करदी हां। तू ते सबनी थाई भरपूर है, मैं तैनूं बेसमझी करके दूर समझ लिया सी, हुण मैं तेरी ही रजा च राजी हां। तू मेरे कीते कर्मां नूं वेख रहा है, मैं मुकर नहीं सकदा कि मैं तेरे वास्ते कुछ भी नहीं कर सकिया। हे प्रभु, पावे मैं तेरियां दित्तियां दातां विच ही राजी हां, मैं होर केड़े दर ते जावां, ऐसा होर कोई दर नहीं है। मेरा शरीर अते जिंद आप ही हो, मेरी यही अरदास है, तू आप ही नेड़े है अते दूर भी अते हर थां विचरदा भी है। आप ही अपनी सत्ता अनुसार सब कुछ वेखण वाला, सब कुछ सुनन वाला सिरजणहार है। जो आप जी नूं पौंदा है उही आप जी दा हुक्म मेरे सिर मत्थे है, उस विच ही मैं राजी हां। साहिब श्री गुरु नानक देव जी सिरी राग विच उचारे हुए शब्द विच फरमाउंदे ने,

तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। इस शब्द गायन की तसीह पाई जसबीर सिंह अते उन्हां दे रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु रामदास जी बिहागड़ा राग विच उचारित छंत दे तीजे भाग विच अकाल पुरख की समर्था अते विशालता दा खूबसूरत चित्रण करदे हुए फरमाउंदे ने कि हे सर्ब कला समर्थ, सब तो वड्डे प्रभु आप महान हो। मैं थोड़ी मत नाल आप जी दे बारे की कथन कर सकता हां। तुसी तां बिना किसे वितकरे दे ना शुकरे जीवां दी वी प्रतिपालना करदे हो। आप समदृष्ट हो अते कृपा दे घर विच ही रहिंदे हो। हे प्रभु, तुसी मेरी समझ तों परे हो। बुद्धि मंडल दियां परतां आप जी दी होई कृपा बारे कुछ भी नहीं समझ सकियां। मैं नीवी मत वाला आप जी बारे की जान सकता हां। मैं मूरख ने तां आप जी दा अमोलक नाम छड़ के पशु मत रखदे हुए कौडियां ही इकट्ठियां कीतियां ने। मैं अन्याणी मत वाला बारिक हां। ना थिर रहण वाली माया जो त्यागनी चाहीदी सी पाप कर करके जोड़दा रहा। हे प्रभु, हुण मैं आप जी दी शरण विच आया हां। कृपा करो मेरी शरण आए दी लाज रख लो जी। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पालै अकिरत कना पूरन दृष्ट तेरी राम। इस शब्द का गायन किया भाई हरि सिंह ते उन्हां दे राग।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रहे हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी 12 और 13 सितंबर को 18वें

0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से सोमवार तक राजधानी में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दूरदराज और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भरोसेमंद बिजली विकल्प उपलब्ध कराने में लघु जलविद्युत परियोजनाओं के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री नाइक ने आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी के पूर्वावलोकन कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में उल्लेखनीय बदलाव आया है। और खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। अब 12 सितंबर को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। एक जरूरी सूचना, पंजाब, हरियाणा ते हिमाचल प्रदेश दे बीएसएफ पेंशनर लई पेंशन नाल संबंधित शिकायतां दे निपटारे लई पेंशन अदालत 11 सितंबर 2026 नूं फ्रंटियर हैडक्वार्टर बीएसएफ जलंधर विखे सवेरे 10 बजे तो शाम 5 बजे तक आयोजित कीती जाएगी।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वल्लों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी पीएसयू ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी बीएमसी चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आ हुण तुहानूं दस दिए अज रात तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल, गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं, आ सुनते हैं देश गान।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी ए, हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। पंजाब के राज्यपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ ने एक सेहतमंद, सुरक्षित ते नशा मुक्त शहर बनाउण लई समुचे समाज की मुहिम का सदा दिता। पंजाब ते यूएई दरमियान व्यापारक निवेश ते सनती भाईवाली नूं होर मजबूत करन लई शारा चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अते इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल कौंसल नाल रणनीतिक गलबात। पंजाब के साबका मंत्री भगत चुन्नी लाल का अज पूरे सरकारी सन्माना नाल अंतम संस्कार कर दिता गया है। माई भारत पंजाब ने सूबे भर के 15 से 29 साल की उम्र के नौजवानों नू myBharat.gov.in पोर्टल से रजिस्टर करन अते विकसित भारत को इसनू करन दी अपील की थी। ते भारत अज चीन के मोकी विखे पाकिस्तान नू 9-0 नाल हरा के औरतों के जूनियर हॉकी एशिया कप के सैमीफाइनल विच पहुंच गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब के राज्यपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ नूं एक सेहतमंद, सुरक्षित ते नशा मुक्त शहर बनाउण लई एक निरंतर रहणयोग समुचे समाज की मुहिम का सदा दिता। उन्होंने नशा तस्करां नूं चेतावनी दित्ती कि वह गैर कानूनी व्यापार छड्ड देण जां तेज कार्रवाई का सामना करन। इस दे नाल ही उन्होंने जोर देके कहा कि नशाखोरी नाल जूझ रहे व्यक्तियों नाल हमदर्दी नाल पेश आना चाहिए अते नशियां दी लत तों बाहर आउण, सिक्ख्या ते रुजगार वल उन्हां दी यात्रा विच उन्हां दी मदद कीती जानी चाहीदी है। ओ नगर निगम चंडीगढ़ वालों कराए गए एक नशा मुक्त जागरूकता प्रोग्राम नूं संबोधन कर रहे सन। उन्होंने स्वय सहायता समूहां SHGs वालों समाज संचालित नशा जागरूकता मुहिम अते चंडीगढ़ व्यापार मंडल दी 3 महीनों दी नशा मुक्त जागरूकता मुहिम नूं शहर दे बाजारां विच शुरू कीता। इस मौके उन्होंने कहा,
3: चंडीगढ़ से इसकी ऐसी शुरुआत करें, यहाँ सब लोगों को भी साथ लें, सब समाजों को साथ में लें, सब धर्म गुरु को साथ में लें, सारे विश्वविद्यालय, स्कूल है, एसोसिएशन है, प्रशासन है, सब मिल करके एक ऐसा अभियान हम शुरू करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि कम से कम सितंबर 30 तक चंडीगढ़ में कम से कम नशा न बिक पाए। ये हमारी पहली प्रायोरिटी है जिसको हम धरती पर उतारने के लिए जो भी संभव हो सकता है प्रशासन से, पुलिस से, यहाँ के लोकल लोगों से मिलकर के अभियान करेंगे ताकि कम से कम देश के सामने एक उदाहरण पेश कर सके। यदि प्रयत्न करें तो सफलता मिलेगी।
2: श्री कटारिया ने जोर देके कहा कि नशे विरुद्ध बचाव की पहली ढाल परिवार है, जदों कि स्कूलों ते अध्यापकों नूं बच्चों नूं सेहतमंद अते उद्देश पूर्ण जीवन वल सेध देनी चाहीदी है। उन्होंने विशेष तौर ते मुहिम नूं जमीनी पद्धर ते ले जाण अते प्रभावित परिवारां नूं सलाह, इलाज ते मुड़ वसीबा नाल जोड़न विच सह सहायता समूहां दी भूमिका दी शलाघा कीती। इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं मेयर श्री सौरभ जोशी ने भी नशा तस्करां विरुद्ध सख्त शब्दां च कहा कि नशे दे सौदागरां दे घरां ते बुलडोजर चलवाए जाणे चाहीदे ने। उन्हां ने श्री कटारिया नूं अजिही कारवाई लई इजाजत देण दी बेनती कीती अते चंडीगढ़ प्रशासन दे संबंधित अधिकारियां नूं कानून अनुसार इस संबंध विच जरूरी कदम चुक्कण दे निर्देश दित्ते। पंजाब की यूएई निवेश पहुंच नूं अगले पड़ाव ते ले जांदिआं सूबे दे व्यापार ते सनअत मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने पंजाब ते यूएई दरमियान व्यापारक निवेश अते सनअती भाईवाली नूं होर मजबूत करन लई शारजा चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अते इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशन

नेशनल कौंसिल आईपी पीसी नाल रणनीत गलबात की थी। ये गलबात कारोबार तो कारोबार बी टू बी संबंधा नू मजबूत करन अते एक संगठित ढांचा स्थापित करन ते केंद्रित सी ता जो पंजाब अते शारजा दे उद्यमियां नू भाईवाल लभण सांझे उद्यम लाउण बरामद वधाउण अते लंबे समय दे आपसी लाभकारी व्यापारक संबंध स्थापित करन विच मदद मिल सके। गलबात बारे श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि इस नतीजे वजो इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल कौंसिल अते इन्वेस्ट पंजाब सनत तो सनत तालमेल नू तेज करन लई सहमत होए। उन्हां दस्सिया कि इन्वेस्ट पंजाब शारजा दे निर्मातावां बरामदकारां अते सेवा प्रोवाइडर्स नूं पंजाब दीआं टुकवीआं सनअतां नाल जोड़न विच सहूलत देगा, नाल ही यूएई विच व्यापारक संभावनावां दी घोख करन वालीआं पंजाब दीआं कंपनीआं दी वी मदद करेगा। गलबात दौरान भारत यूएई व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौते अते आलमी बाजारां नाल यूएई दे वध रहे व्यापारक समझौतिआं तों पैदा होण वाले रणनीतिक मौकिआं नूं विशेष तौर ते मानता दित्ती गई। पंजाब के साबका मंत्री भगत चुन्नी लाल का अज जलंधर के मॉडल हाउस नेड़े शमशान घाट विखे पूरी सरकारी सन्माना नाल अंतम संस्कार कर दिता गया है। साबका मंत्री का लंबी बीमारी मगरों अज देहांत हो गया सी, ओ 94 साल के सन। साल 2012 विच श्रोमणी अकाली दल बीजेपी सरकार दौरान कैबिनेट मंत्री रहे श्री भगत ने उस समय की प्रकाश सिंह बादल सरकार विच स्थानक सरकार मैडिकल सिख्या जंगलात जंगली जीव अते किरत विभागा दे मंत्री वजों जिम्मेवारी निभाई। उन्हां तीन बार 1997 2007 अते 2012 विच जलंधर पछमी विधानसभा हल्के की नुमाइंदगी की। उन्होंने पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर वजों भी सेवा निभाई। उन्होंने पुत्र महेंद्र भगत इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार विच मंत्री ने। पंजाब सरकार वल्लों सोग वजों छुट्टी का ऐलान किया गया। पंजाब विधानसभा के स्पीकर श्री कुलतार सिंह संधवा ने भी श्री भगत चुन्नी लाल के देहांत से डूंगा दुख जाहिर किया है। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। माई भारत पंजाब ने अज राज भर के 15 से 29 साल की उम्र के नौजवानों को myBharat.gov.in पोर्टल से रजिस्टर करन अते विकसित भारत क्विज नूं करन दी अपील की थी। एक क्विज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 का शुरुआती पड़ा है अते 30 सितंबर 2026 तक खुला है। प्रेस क्लब चंडीगढ़ विखे मीडिया नूं जानकारी देंदे हुए माई भारत पंजाब के स्टेट डायरेक्टर इंचार्ज श्रीमती रशमीत कौर ने कहा कि यह क्विज 5 पड़ाव वाली पूरी तरह योग्यता आधारित यात्रा लई प्रवेश बिंदु है, जो चुने हुए नौजवानों वालों जनवरी 2027 विच नवी दिल्ली विच प्रधानमंत्री दे सामने विकसित भारत लई अपने विचार पेश करन दे नाल खत्म हुंदी है। पंजाब के समाजिक सुरक्षा स्त्री ते बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दस्सिया है कि विभाग वल्लों स्माइल स्कीम अधीन अमृतसर पटियाला लुधियाणा ते जलंधर विच बेघर अते भिख्या विच शामिल व्यक्तियों के बचा अते मुड़ वसेवे लई विशेष उपराले किए जा रहे हैं। इस तहत अमृतसर विच मार्च 2026 तो चल रहे सर्वेखण दौरान हुण तक 422 भिख्या विच शामिल व्यक्तियों की पछाण की जा चुकी है। इन्हां विचों 32 व्यक्तियों का सफल मुड़ वसेवा किया गया है। पटियाला विच भी 168 व्यक्तियों की पछाण करके उन्हां दे मुड़ वसेबे लई कार्रवाई जारी है, जबकि सितंबर के दूजे हफ्ते दौरान लुधियाणा और जलंधर विच भी सर्वेखण शुरू किया जा रहा है। पंजाब के खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुडिया ने सूबे नूं नशा मुक्त करन लई चलाई जा रही युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम तहत अज बठिंडा विखे जिला पदरी समीख्या मीटिंग की अगवाई की थी। मीटिंग दौरान जिला बठिंडा के सारे विधानसभा हल्कियां के नशा मुक्ति मोर्चा के अहुदेदार पुलिस अते सिविल प्रशासन अधिकारियों ने नशिया खिलाफ की जा रही कार्रवाई बारे विचार सांझे किए। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई करने वाले एक नैटवर्क का पर्दाफाश करदिया दो एक ही 47 राइफल 3 मैगजीना 50 जिंदा कारतूस समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार किया है। इस बारे जानकारी देंद्या पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पछाण कर ली गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज अते हस्पताल GMCH चंडीगढ़ ते मनोविज्ञान विभाग ने गैर सरकारी संस्था परिवर्तन दे सहयोग नाल आज हस्पताल कैंपस विखे विश्व खुदकुशी रोकथाम दिवस मनाया। भारत अज चीन दे मौके विखे पाकिस्तान नूं 19-0 नाल हरा के औरतों दे जूनियर हॉकी एशिया कप दे सैमीफाइनल विच पहुंच गया। भारत दी मर्दां दी जूनियर हॉकी टीम पहला ही जूनियर हॉकी एशिया कप दे सैमीफाइनल विच पहुंच चुकी है। आखिर च खास खबरां, पंजाब के राज्यपाल ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ नूं सेहतमंद सुरक्षित ते नशा मुक्त शहर बनाने लई समुचे समाज की मुहिम का सद्दा दिता। पंजाब ते यूएई दरम्यान व्यापारक निवेश ते सनअती भाईवाली नूं होर मजबूत करने लई शारा चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ते इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल कौंसल नाल रणनीतिक गलबात।

0: कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: आज तक इस योजना नाल 9,50,00,000 तो ज्यादा लाभपात्री जुड़ चुके ने। जे तुसी भी 18 to 40 साल की उम्र के हो तो मासिक अटल पेंशन समेत योजना के 3 गारंटेड लाभों की जानकारी लई अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।
2: पटवारी साहब लंघ आईए जी,
3: आजो आजो आजो बल साहब बच्चों आजो।
2: पटवारी साहब जय हिंद जी।
3: जय हिंद जी, जय हिंद जी। और सुनाओ बल साहब की हाल चाल तुहाडा?
2: हाले चाले वाह वाह वधिया, चढ़दी कला मेरे उस रब दी, असी तां कहिंदे आ सब ते बनी रहे। तुसी सुनाओ?
3: तगड़ा जी, बिल्कुल तगड़ा। देखो तुसी कहा ना सब तो बनी रहे मेहर।
2: हाँ जी,
3: परमात्मा ते मेहर सब ते बनी रहनी चाहिदी है
2: जी,
3: और रहिंदी भी है।
2: अच्छा जी।
3: पर इंसान जड़ा है ना जी,
2: हाँ जी,
3: वो अपने आप दे विच इन्नियां मुश्किलातां दे विच अपने आप नूं पा लैंदा
2: जी,
3: कि जिवें कि वो राह जांदे होए ना कहिंदे हाँ जी पंगा लै लिया।
2: अच्छा जी।
3: जिवें आपां जे गल करिए थोड़ा बहुत पैसों की गल कर लईए या पढ़ाई की गल कर लईए या फिर उवें ही आपां जिंदगी विच ना जी नठ भज पई हुई है
2: जी,
3: जिंदगी इस वेले स्ट्रैस दे विच दबाव दे विच है
2: जी,
3: तो इंसान किसी वेले अपने जो टीचे पूरे प्राप्त नहीं कर पाता।
2: हाँ जी।
3: जो उसने लक्ष्य बन्ने होंदे है
2: जी
3: अपनी जिंदगी दे विच,
2: हाँ जी,
3: जदों वह प्राप्त नहीं कर पाता ना
2: जी,
3: उस वेले वो ये सोचता कि यार मैं इस जिंदगी च रखिया की है,
2: हाँ जी,
3: मैं क्यों ना मारी जावां।
2: अच्छा, ये तुहाडे हिसाब नाल यही कारण है स्ट्रैस का?
3: देखो ना गल ये है, कारण तो बहुत ने।
2: हाँ जी।
3: कारण एवें है जी कि देखो गल ये हो जाती है कि इंसान ना जदों जिन्ना कु हुंदा है
2: जी
3: उहदे विच ही अगर अपने आप नूं अनुशासित करके चल पवे
2: जी
3: तो फिर शायद वह मुश्किलात नहीं आउंदी।
2: वह तो है जी बिल्कुल।
3: लेकिन जदों फिर हुंदा की है कि अपने तो वध के जदों वह करता है,
2: हाँ जी,
3: उस वेले फिर ये जड़े स्ट्रैस है, ये जड़ियाँ मुश्किलातां है,
2: हाँ जी,
3: ये जड़ी मानसिक हालत इंसान दी बन जाती है
2: जी,
3: ये फिर उस वेले थोड़ा बहुत बंदा सोचण लग जाता है।
2: एक गल पटवारी साहब ये भी आ, तुसी ये देखो भी बंदा अपने आप नाल जूझ रहा हुंदा, वो करदे हुए जदों बंदा अपने आप नूं छड्ड के अपने हालात नूं छड्ड के दूजे वल देखण लग पैंदा, दूजिया नाल अपने आप नूं कंपेयर करन लग पैंदा, किते ना किते वो जिहड़ा स्ट्रैस दी आपां गल कर रहे हैं उहदा ज़्यादा वड्डा कारण वह भी है।
3: कहिंदे ना कि मेरी छोटी गड्डी है
2: जी,
3: जे उसने कुते छोटी गड्डी लै ली या वड्डी गड्डी लै ली मेरी उस तो वड्डी होनी चाहिए।
2: बिल्कुल जी।
3: तो एक इदां दे कारण कई हो जाते हैं।
2: हाँ जी।
3: अज देखो ना असी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मना रहे हैं।
2: अच्छा जी।
3: तो ये जड़ा विश्व आत्महत्या नू रोकथाम दे लई,
2: हाँ जी,
3: आपां सारिआं नू
2: जी
3: पूरी सुसाइटी नू जिथे जिथे भी आपां ये विचरदे हाँ
2: जी,
3: जिथे भी तुहानू किते लगदा कोई स्टूडेंट है विद्यार्थी है, अजकल विद्यार्थियों नू बहुत ज़्यादा स्ट्रैस रहिंदा है।
2: बिल्कुल जी।
3: विद्यार्थियों नू ये सोचन तू मजबूर होना पैंदा है कि मेरा भविष्य की है, मैं हाँ की केड़े खेत्र च जाना है
2: जी,
3: केड़े खेत्र च मैं कम करना है, केड़े खेत्र च मैनू नौकरी मिलनी है
2: जी,
3: इसे ही वो छछो पंच पिया रहिंदा है।
2: बिल्कुल जी।
3: जदों वो टीचे नू प्राप्त नहीं कर पाउंदा

0: प्रोग्राम किसान वाणी दे प्रयोजक ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नाल छोटे किसानों का भविष्य होएगा सुरक्षित।
2: अते 60 साल की उम्र वालों नूं 3,000 रुपए महीने की पेंशन होएगी सुनिश्चित।
1: 55,000 रुपए तो 200 रुपए महीने की किश्त दे के योजना विच शामिल हो सकते ने 18 तो 40 साल तक के किसान।
2: इस योजना विच सरकार देगी बराबर दा योगदान।
1: सारे किसान भैन भरा इस योजना दे लाभ लई जन सेवा केंद्र विच जान
2: ते अपना नाम मुफ्त विच दर्ज कराण।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता दी मेहनत नूं समर्पित। पेंशन नाल सुरक्षित उन्हां दा मान। कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित विच जारी।
3: सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी जसप्रीत कौर ते रेडियो ते समा हो गया है तुहाडे ते साडे सांझे प्रोग्राम किसान वाणी दा। क्योंकि धरती मां दी सेवा करदे जो दिन रात पसीना वहाउंदे ने उन्हां मेहनती किसान वीरां लई असीं नवें सुनेहे लियांदे हां प्रोग्राम किसान वाणी दे विच। ते फिर आओ जाणीए अज दीआं नवीआं खेती खबरां अते खेती माहरां दीआं खास सलाहां। ते दोस्तो, इस तों पहलां कि आपां होर गल्लां बातां करिए, आओ सुणदे हां इह गीत।

0: दोस्तो उम्मीद है तुहानू साडा अज दा इह किसान वाणी प्रोग्राम जरूर पसंद आया होवेगा ते तुहाडे लई लाहेवंद भी जरूर रहा होवेगा। सो इस दे नाल ही मैनू जसप्रीत नू दियो इजाजत, धन्नवाद।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना नाल छोटे किसानों का भविष्य होएगा सुरक्षित।
2: अते 60 साल की उम्र वालों को 3,000 रुपए महीने की पेंशन होएगी सुनिश्चित।
1: 55 रुपए तो 200 रुपए महीने की किश्त दे के योजना विच शामिल हो सकते हैं 18 से 40 साल तक के किसान।
2: इस योजना विच सरकार देगी बराबर दा योगदान।
1: सारे किसान भैन भरा इस योजना दे लाभ लई जन सेवा केंद्र विच जान
2: ते अपना नाम मुफ्त विच दर्ज कराण।
1: अन्नदाता दी मेहनत नूं समर्पित पेंशन नाल सुरक्षित उन्हां दा मान कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित विच जारी। किसान वाणी प्रोग्राम दे प्रायोजक सन खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।

0: विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही है। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: आओ सुनते हैं देशवासियां दे इस मुहिम संबंधी की विचार ने।
2: मैं गुरप्रीत सिंह, प्रिंसिपल ITI फरीदकोट। प्रधानमंत्री जी की यह अपील बिल्कुल सही है। जदों त्यौहार जां आम दिनां विच लोक बाहरला समान छड्ड के साडे स्थानक कारीगरां अते छोटे दुकानदारां तों खरीददारी करदे हन तां पैसे अपने ही

0: 2026 से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हो रहा है। हर वर्ष यह आयोजन हमें प्रेरित करता है कि हम पोषण के प्रति निरंतर जागरूक रहें और इसे अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इस वर्ष पोषण माह का हमारा संकल्प है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, जिसमें हमारा विशेष ध्यान विविधतापूर्ण और प्रोटीन युक्त आहार, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पौष्टिक भोजन ECCE और गर्भवती व धात्री माताओं की समग्र देखभाल पर केंद्रित रहेगा।
1: आओ सुनिए सेहत संभाल वर्करा वल्लों पोषण माह संबंधी जानकारी।
2: मैं कमलजीत कौर, सुपरवाइजर फरीदकोट। जिवें कि देश भर दे विच राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, जिस दा मुख मकसद औरतां बच्चियां अते किशोरां दी सेहत दे पद्धर नूं उच्चा चुकना है। इस तहत जिवें कि खुराक विभिन्नता अते ढुकवां प्रोटीन बारे जानकारी देना, होर भी इस तरह दीआं वख-वख गतिविधियां दे राहीं लोकां दे विच पोषण प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है।
3: मैं डॉक्टर राजीव मनहास, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट तो। इस मौके ते सूबे भर विच औरतां बच्चियां अते किशोरां विच पोषण सेहत अते देखभाल संबंधी जागरूकता पैदा करन लई वख-वख गतिविधियां करवाइयां जा रही हैं। संतुलित अते पौष्टिक आहार, साफ सफाई, नियमित सेहत जांच, बच्चों की सही देखभाल अते किशोरां दा पोषण संबंधी लोड़ां वल विशेष ध्यान देना समय दी मुख लोड़ है।
4: मेरा नाम रमनप्रीत कौर है और मैं मोहाली जिले तो बोल रही हूँ, आंगनवाड़ी वर्कर ब्रह्माजरा ए भी। और सर असी पोषण माह मना रहे हैं, जिस विच असी लेडीज नू गर्भवती औरतां नू नर्सिंग मदर नू गाइड करते हैं। और गर्भवती औरतां नू जो PMDY जो स्कीम चल रही है उसके 5000 जिदा पहला बच्चा है उन्हां नू मिलता है, और जेड़ा 6000 रुपया मिलता है जेड़ा नर्सिंग मदर है जिन्हां दे सैकंड बेबी लड़की है उन्हां नू 6000 रुपया मिलता है, ताकि वो अपना सेहत दा खान पीन दा ध्यान रख सकन।
5: मैं मोनिका आंगनवाड़ी वर्कर पठानकोट। 0 to 6 months तक बच्चे नू मां दा दूध लाजमी दिता जाना चाहिदा है। इस तो अगे 6 साल दे बच्चियां दा भी साडा टारगेट हुंदा है, जिस विच असीं अलग अलग तरह दे एक्टिविटीज करवा के पेरेंट्स नू जागरूक करते हाँ कि किवें असीं चंगी खुराक मिलेट्स बेस डाइट दे के बच्चियां नू असीं हेल्दी बना सकते हाँ।
1: आज दे प्रोग्राम विच जिलिया तो सहयोग रहा मोहाली तो मनोज गिरधर, पठानकोट तो रजनीश अते पटियाला तो राव वरिंदर। इस दे नाल ही समाचार दर्शन दा ए अंक खत्म हुंदा है। अगले अंक विच किसे होर विषय ते होएगी गलबात, उदो तक लई मैनू दियो इजाजत। नमस्कार। पेशकारी सहायक मनप्रीत सिंह, पेशकश राजेश वाली।
6: हुण तुसीं सुन रहे सी समाचार दर्शन, असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। आओ सुनदे हां आबशार प्रोग्राम च गजल मिताली सिंह दी आवाज़ दे विच।

जी दोस्तों, हाजिर है थोड़ी अपनी दोस्त कविता प्रोग्राम जिंदगी हसीन है लेके। कहते हैं कि जिंदगी सचमुच बहुत हसीन है, पर कई बार असी अपनी परेशानियां, अपने दुख, अपने पास ते अपनिया नाकामियां नूं इन्ना दिल नाल लगा लैंदे हां कि साडी जिंदगी किन्नी खूबसूरत है यह नज़र ही नहीं आता। क्योंकि अज दी शाम असी एक बहुत ही प्यारी ते उम्मीद भरी गल करांगे। हर सवेरा एक नवी शुरुआत है, ते जो बीत गया वह वापस नहीं आना, पर जो आने वाला है वह साढ़े हाथ में जरूर है। कहते हैं कि रात भावें किन्नी भी लंबी होवे, सवेरा जरूर आता है। डिगे हुए बंदे नूं भी वक्त दोबारा खड़ना सिखाता है। जिंदगी नूं कल दे गमां नाल बर्बाद ना करो। हर नवा दिन कहता है चलो अज तो फिर शुरू करो। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं के दे इस खूबसूरत गीत आशाएं दे नाल।

केके दी आवाज दे विच खूबसूरत गीत सुन रहे सी आशाएं। दोस्तों जिंदगी विच कई बार असी सोचते हैं कि काश काश कि मैं वो फैसला ना किता हुंदा, काश वो रिश्ता ना टुटदा, काश मैं वो मौका ना गवाया हुंदा, ते काश मैं थोड़ा होर मेहनत कीती हुंदी। पर जिंदगी दोस्तों काश नाल नहीं चलती। जो हो गया वो साडे कंट्रोल विच नहीं, पर हुण की करना है यह तो जरूर साडे कंट्रोल विच है ना। इस करके अपने पास्ट नू हमेशा कोसदे ना रहो, उस तो सबक लवो, उन्हें एक लैसन बनाओ, क्योंकि हर गलती तुहानू तोड़न नहीं आती, कुछ गलतियां तुहानू सिखाण भी आंदियां ने। जो बीत गया उन्हें भुल जाना ही चंगा है, हर जख्म नू वार वार सहना जरूरी नहीं। कल दी हार नू अज दी पहचान ना बनाओ, जिंदगी नू एक होर मौका देना जरूरी है। आओ अगला गीत सुनते हैं। आवाज दिती है सुखविंदर सिंह, अभिषेक नैलवाल ने, ते गीत दे बोल ने परिंदा।

दोस्तों जिंदगी विच कुछ लोग आते ने सानू खुशियां देंदे ने कुछ सिखाते ने ते फिर चले जाते ने। असी अक्सर सोचते हाँ हाय ये मेरे नाल ही क्यों होया, पर हर इंसान तुहाडी जिंदगी विच हमेशा लई नहीं आता। कुछ लोग चैप्टर होंदे ने पूरी किताब ने, जे कोई तुहानू छड्ड के चला गया तो अपनी जिंदगी नू उत्थे खत्म ना करो, हो सकता है जिंदगी तुहाडे लई कुछ होर खूबसूरत लिख रही होवे। आओ अगला गीत सुनते हैं, आवाज़ देती है अमित त्रिवेदी जसलीन कौर ने।

दोस्तों अखीर विच कहांगे कि ना हार तो डर ना वक्त तो हार। हर दिन अपने आप नूं दे एक मौका हजार, जो बीत गया वो कहानी बन गया, जो आने वाला है वो तेरी नवी कहानी बनेगा। बस उम्मीद दा दिया दिल विच जगदा रखी, जिंदगी हसीन है इनू हमेशा जिंदा रखी। तो आओ अखीर विच सुनते हैं आलिया भट्ट की आवाज़ दे विच ए जिंदगी गले लगा ले।

माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने

0: यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड। अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, क्रॉप्स, ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
1: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे।

0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
1: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
2: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
1: भारत की अध्यक्षता चार प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में

0: व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार तीन प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। 0 हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India supports a safe and sustainable space domain. Virtually addresses first international space summit in Paris. New Delhi gears up to host world leaders at 18th BRICS summit this weekend. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to arrive tomorrow. Home Minister Amit Shah reviews disaster preparedness, calls for climate resilient villages and cities under zero casualty vision. India and Russia step forward on joint production of

0: Secretary stressed on strengthening social media presence and audience engagement, particularly on Instagram, and called for creation of engaging audience-friendly video content on digital platforms. This is Akashwani. You are listening to News at 9. Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates. And now on to sports. India made a strong start at the World Para Shooting Championship, bagging 4 medals, including 1 gold, 2 silver and 1 bronze on the opening day of the event at Changwon in South Korea today. The Indian women's team of Mona Agarwal, Avni Lekra and Millie Shah clinched gold in the R2 10-meter air rifle standing Ace H1 team event. Mona Agarwal also won silver in the individual event, while Avni Lekra got bronze. With her performance, Mona Agarwal has become the first Indian shooter to secure a place at the 2028 Los Angeles Paralympic Games. In the men's competition, the Indian trio of Rakesh Nidagundi, Anand Krishna and Swaroop Unhalkar won silver in the R1 10-meter air rifle standing SH1 team event. In hockey, the Indian women's team stormed into the semi-finals of the Junior Asia Cup with a ruthless 19-0 demolition of Pakistan in the quarterfinal at Mochi in China today. The Indian men's team has already entered the semi-finals of the Junior Asia Cup. And in women's cricket, India were 107 for 3 in 16 overs against Bangladesh in the first semi-final match of Asia Cup in Dubai when reports last came in. Earlier, Bangladesh women won the toss and opted to field. Indian team has so far remained unbeaten in the tournament. Benchmark domestic equity indices ended 0.2% higher, snapping a 3-day losing streak. The Sensex gained 138 points to close at 74,903. Nifty added 46 points to settle at 23,478. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India supports a safe and sustainable space domain, virtually addresses first international space summit in Paris. New Delhi gears up to host world leaders at the 18th BRICS summit this weekend. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to arrive tomorrow. Home Minister Amit Shah reviews disaster preparedness, calls for climate-resilient villages and cities under zero casualty vision. India and Russia step forward on joint production of civil passenger planes and deliveries of 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. India Open campaign at World Para Shooting Championship in South Korea with 4 medal haul including a gold, and in Women's Junior Asia Cup hockey, India storm into semi-final with record 19-0 win over Pakistan in China. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक महफूज और पायदार खलाई शोबे की हिमायत करता है। उन्होंने वर्चुअल तौर पर पेरिस में मुनाकिदा पहले बैन-अल-अक़वामी खलाई समिट से खिताब किया। नई दिल्ली इस हफ्ते के आखिर में होने वाली 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में आलमी रहनुमाओं की मेज़बानी के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के कल भारत पहुंचने की तवक्को है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कुदरती आफात से निमटने की तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने कोई भी हलाकत न हो के नज़रिए के तहत आबोहवा की तब्दीलियों का मुकाबला करने वाले मजबूत गाँव और शहर बनाने पर जोर दिया। भारत और रूस ने सिविलियन मुसाफिर तैयारों की मुश्तरक तैयारी और भारतीय ऑपरेटर्स को 105 इलाकाई टर्बोप्रॉप तैयारियों की मुमकिना फराहमी के सिलसिले में पेशरफ की है। मरकज़ ने ई कॉमर्स जाब्तों में तरमीम करते हुए कीमतों में शफाफियत, स्पॉन्सर शुदा फहरिस्तों और तलाश के नतज में हेर फेर से मुतालिक जवाबित मजीद सख्त कर दिए हैं। जनूबी कोरिया में जारी आलमी पैरा शूटिंग चैम्पियनशिप में भारत ने शानदार आगाज करते हुए 4 तमगे हासिल किए, जिनमें सोने का एक तमगा भी शामिल है। और ख्वातीन के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत रिकॉर्ड 0 के मुकाबले 19 गोल की जीत

0: के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बैन-अल-अक़वामी कानून, बातचीत और कसीर मुल्की तआवुन पर मबनी एक महफूज, पुरअमन और पायदार खलाई शोबे की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि साइंसी डेटा को खुलेपन और दयानतदारी के साथ पूरी इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात आज फ्रांस के शहर पेरिस में मुनक़दा बैन-अल-अक़वामी खलाई समिट से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए कही।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future.

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए शुष्क क्षेत्रों में कृषि की नई संभावनाओं और जलवायु अनुकूल समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR IARI में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक RS बाना जी। RS बाना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: बाना जी। सबसे पहले एक बेसिक सा प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि शुष्क भूमि क्या है, इस पर किस तरह की खेती होती है और इसमें चुनौतियां किस तरह की हैं?
2: अगर हमारे देश के हम कुल कृषि रकबे की बात करें तो उसमें 45% के आसपास ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिंचाई के साधन या तो उपलब्ध है ही नहीं और है भी तो बहुत सीमित। और जो सिंचित क्षेत्र है बाकी का 55%, उसमें भी काफी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर सिंचाई के साधन सीमित है। और जो कम बरसात वाला ऐसा क्षेत्र है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, तो ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर बरसात कम होती है। अमूमन 750 मिलीमीटर से कम बरसात वाले क्षेत्रों को अर्धशुष्क क्षेत्र और जो 250 मिलीमीटर से कम

0: मोले हाइपर एरिड क्षेत्र उनको बोलते हैं, यानी कि बहुत ही शुष्क क्षेत्र। तो जो ये शुष्क क्षेत्र है उनमें चुनौतियों की अगर हम बात करें तो पानी की उपलब्धता नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। उत्पादन स्तर काफी कम रहता है फसलों का, गरीबी बहुत बड़ी एक समस्या है। तो कई तरह की सामाजिक आर्थिक विषम परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से, क्योंकि ये जितना भी हमारा जो ड्राईलैंड क्षेत्र की हम बात करते हैं, करीब करीब 40% आबादी इसमें रहती है, और जो पशुधन है हमारे देश का आधे से अधिक पशुधन इस क्षेत्र में है। तो चारे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, अनाज की उपलब्धता, माइग्रेशन रोजगार के अवसर के लिए, कमाने के लिए दूसरे क्षेत्रों में यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है। तो ये इस तरह की जो समस्याएं हैं वो है। इसके अलावा जलवायु संबंधित, मृदा संबंधित समस्याएं हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति कम है, जैविक कार्बन कम है, और चूंकि पशुधन है तो जितनी भी वनस्पति होती है उनको पेट भरने के लिए खिलाना जरूरी है। और जलवायु संबंधित चुनौतियों की अगर हम बात करें तो कभी तो बरसात आती नहीं है, आती है तो बहुत कम आती है, कई बार बरसात के बीच में काफी सारा अंतराल आ जाता है, उस दौरान फसलें खराब हो जाती है चूंकि पानी की कमी है।
1: तो वैसे मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो शुष्क भूमि है और जो आर्द्र भूमि है, इनमें खेती में क्या अंतर होता है?
0: शुष्क भूमि में जो ऐसी फसलें होती है मैन मुख्यतः जिसमें बहुत कम पानी में ही वो पैदा हो सकती है, और जो हमारे शुष्क क्षेत्र है उनकी अगर हम फसलों की बात करें तो मिलेट्स एक बहुत बड़ा समूह है जो बारानी क्षेत्रों में होता है, यानी कि जो जैसे कि बाजरा है, ज्वार है,
1: और अनाज,
0: जी मोटा अनाज वाली फसलें जिनको श्री अन्न भी बोलते हैं। और मिलेट्स के अलावा दलहनी फसलें, तिलहनी फसलों का भी काफी बड़ा क्षेत्र, यानी कि करीब करीब दलहनों की बात करें तो 85-90% के आसपास दलहन भी बारानी क्षेत्रों में होती है, और तिलहनी जो फसलें हैं वो भी करीब करीब 80% के आसपास इन क्षेत्रों में ही होती है। तो ये इस प्रकार की फसलें होती है, जबकि आर्द्र क्षेत्र ऐसे हैं जो धान वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर जल भरा होता है, ज्यादा बरसात होती है, तो वहाँ की समस्याएं अलग प्रकार की होती है।
1: आज के समय में अगर हम बात करें तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जाए, तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जब हम देखते हैं कि किसानों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी सरकार सहायता प्रदान कर रही है और शुष्क क्षेत्रों में ये पहल कुछ ज्यादा हो रही है।
0: सरकार लगातार प्रयासरत है कि किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों का जीवन स्तर उच्च हो, उसमें कोई संदेह नहीं है, और सरकार और जो सरकारी संस्थान है उसमें वो लगे हुए हैं। और जो जलवायु है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा होने की प्रबल संभावनाएं हैं, परंतु जैसे जैसे ये वैज्ञानिक विकास हो रहा है, अगर हम आज के एक या दो दशक पहले की हम बात करें तो यदि 10% बरसात में कमी आती थी, मानसून 10% कमजोर रहता था, तो करीब करीब 13-13.5% से भी ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाता था। अब उसी 10% में 0.22% तक ही कमी आती है, हमारा खाद्यान्न उत्पादन स्तर हम बना के रखते हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक विकास हुआ है और जो सरकार के प्रयास है और हमारे जो किसानों की मेहनत है उससे हम जलवायु परिवर्तन को काफी हद तक मात दे पाए हैं। परंतु यदि दीर्घकाल की बात करें तो हमें जलवायु सहनशील किस्मों, जलवायु से संबंधित जो रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं उनको उत्पादन करके सरकार, विज्ञान, वैज्ञानिक और किसानों को मिलकर काम करना होगा ताकि हम निरंतर आगे बढ़ सके।
1: डॉक्टर साहब एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, फसल विविधीकरण करना, अंतर फसल करना और कृषि वनीकरण जैसी जो प्रणालियां होती है ये शुष्क भूमि में कितनी लाभदायक हो सकती है?
0: जो बारानी क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, उनमें फसल की फेल होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे आपने पूर्व में कहा फसल विविधीकरण, और ये जो अंतर फसलीकरण है यानी कि जो इंटरक्रॉपिंग है, एक ही साथ दो से अधिक प्रकार की फसलें लगाएं, बागवानी, एग्रोफोरेस्ट्री, या फसलों को अदल बदल कर बोना, बहुत सारी फसलें एक साथ खेतों में लगाना, उसका फायदा ये है कि यदि एक फसल फेल हो जाती है तो दूसरी फसल एक तरह से इंश्योरेंस होती है, यही इंटरक्रॉपिंग का सबसे बड़ा फायदा है। इसी तरह से जो हमारा शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर पशुधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है और वो एक बारानी क्षेत्रों की जीवन रेखा है, जीवन की आधारशिला है। तो जो एग्रोफोरेस्ट्री है वो पशुधन के लिए एक चारे का वैकल्पिक स्रोत तैयार करती है, वर्ष भर किसानों की आमदनी होती रहे इसके लिए जरूरी है कि बागवानी, एग्रोफोरेस्ट्री, अंतर फसलीकरण का समावेश हमारी फसल प्रणालियों में हो और फसल विविधीकरण को हम बड़े पैमाने पर अपनाएं।
1: डॉक्टर बाना, अभी ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जा रहा है जिसमें साउथ साउथ कोऑपरेशन को विशेष तौर पे महत्व दिया जा रहा है, तो भारत का ये जो सहयोग की भावना है भारत की, इसके माध्यम से शुष्क भूमि की खेती के क्षेत्र में भारत के साथ साथ दूसरे देशों को भी कैसे महत्व दिया जा रहा है, खासतौर पर जब हम अनुभव की बात करते हैं, तकनीक साझा करने की बात करते हैं, इस पर

0: थोड़ा सा रोशनी डालें
1: जी। भारत सरकार का जो ICAR है, कृषि मंत्रालय का, और ICRISET जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है हैदराबाद बेस्ड, ये दोनों मिलकर जो ड्राईलैंड कॉन्फ्रेंस 10, 11, 12 सितंबर 2026 का आयोजन कर रहे हैं, उसमें दुनिया भर के विश्व स्तर के जो वैज्ञानिक गण है, किसान है जो बारानी खेती से संबंधित, वो सब एकत्रित हुए हैं और राजनीतिक नेतृत्व भी वहां पे आया है। माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज वहां पर आके और एक अपना विजनरी टॉक दी है। तो ये क्योंकि भारत अब दुनिया में एक राह दिखाने वाला है, उस पे चल रहा है, और हम जो विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, हमें बारानी क्षेत्रों को, ड्राईलैंड्स को विकसित करना है, और जो ग्लोबल साउथ की जो हम बात करते हैं, यानी कि दुनिया का वो दक्षिणी हिस्सा जो जिसमें लैटिन अमेरिका भी है, अफ्रीका है, एशिया पैसिफिक के जो देश हैं, जो विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, उनमें भारत एक लीडर की भूमिका में है। और ये जो ड्राईलैंड से संबंधित अनुसंधान है भारत में, ICAR में, IARI जो पूसा संस्थान है उसमें, और ICAR के इंस्टीट्यूट है जैसे कि काजरी है जोधपुर में, क्रीडा है हैदराबाद में, ये जो तकनीकियों का विकास किया है वो दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। और जो दुनिया भर के संस्थान है, वैज्ञानिक है जो आज एकत्रित हुए हैं, वो सब उन पे मंथन करेंगे। और ICRISET का और ICAR का ये 50 साल का सहयोग हुआ है, उसको भी एक मनाया जा रहा है 2026 में, तो उस पे मंथन होगा, क्या क्या तकनीकियां हो सकती है जो भविष्य में जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में हमारे किसानों की आजीविका और आय बढ़ाती रहे, और जो ये फसल प्रणालियां हैं बारानी क्षेत्रों की, शुष्क क्षेत्रों की, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, सतत विकास कैसे हो, उस पे मंथन होगा।
0: डॉक्टर साहब, ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस जो हो रही है, इसमें शोध, उद्योग, स्टार्टअप, सरकार और किसान संगठनों को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है, तो आपको लगता है कि सभी पक्षों के बीच में जब सहयोग बेहतर होगा तो फिर शुष्क भूमि के किसानों की आय बढ़ेगी और खेती की संभावनाएं जो कम होती हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी?
1: बिल्कुल, इसमें हमें साथ मिलकर काम करना होगा। और जो थीम है ड्राईलैंड कांग्रेस की, साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब दुनिया भर के जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, यदि साथ मिलकर काम करते हैं तो वो एक बड़ी दीर्घकालिक सोच होगी। और साथ ही जो ये हमारे अलग अलग पार्टनर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, अनुसंधान करने वाले, पॉलिसी बनाने वाले, स्टार्टअप, एंटरप्राइजेज, यूथ, महिलाएं, ये सब अगर मिलकर आगे बढ़ते हैं, और ड्राईलैंड कॉन्फ्रेंस का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो जलवायु परिवर्तन के दौर में किस तरह से खेती को सतत उत्पादन मिलता रहे, शुष्क क्षेत्रों में किसानों की आय निरंतर बढ़ती रहे, और जो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कई बार नुकसान हो जाता है, बहुत तगड़ा ड्राउट, सूखा आ जाता है, उससे माइग्रेशन बढ़ जाता है, उन सबको रोकने के लिए हम सबको मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर काम करना होगा।
0: डॉक्टर बाना, कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों को किस तरह की फसलों को अपनाना चाहिए, कैसी पद्धति अपनी रखनी चाहिए?
1: हमारे जो ड्राईलैंड्स है उनकी अलग ही प्रकार की फसलें भी होती है, कुछ ऐसी फसलें होती है जो दूसरी जगह पे उतनी नहीं होती, बीजीय मसाले होते हैं जिसमें कि जीरा है, सौंफ है, धनिया है, मेथी है, नागोरी पान मेथी है, तो ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाली फसलें हैं। यदि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करें तो यूरोपीय बाजार या अमेरिकी बाजार में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। और कुछ किसान और जो आजकल युवा उद्यमी विशेषकर FPO का निर्माण करके और अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं, और भारत में भी जो किसानों की आयु बढ़ रही है, युवा कम आकर्षित हो रहा है, तो ये जो इस तरह की एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाली फसलें हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, उसके जरिए हम युवाओं को खेती की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और जो बारानी क्षेत्रों की फसलें हैं उनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है अगर युवा इसमें आगे आते हैं और एक्सपोर्ट हब बना के, और इसमें न केवल युवाओं का बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र है बारानी क्षेत्रों के, उनके किसानों की आय बढ़ेगी।
0: डॉक्टर साहब, किसानों के हित की जब बात कर रहे हैं तो कोई किसान यदि मदद लेना चाहे तो ICAR की बात हो, पूसा संस्थान हो, और ICRISET हो, जिनकी साझेदारी के 50 वर्ष अब पूरे हो रहे हैं, कैसे उनकी मदद ले सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं शुष्क भूमि में अपनी खेती को बढ़ाने के लिए?
1: ICRISET जो कि दुनिया भर में सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में काम कर रहा है, और ICAR का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का जिसकी पहुंच, जहां बोलते हैं ना रेयरेस्ट ऑफ जो जगह है, सुदूर क्षेत्र है, पहाड़ अरुणाचल के दिरांग से लेके अंडमान के पोर्ट ब्लेयर तक, और सब जगह देश भर में हर जगह ICAR के संस्थान मौजूद है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद है जो किसानों के साथ निरंतर काम कर रहे हैं, उनकी सिर्फ समस्याएं सुनी

0: उनको लैब तक लाया जाता है और लैब में उनका समाधान खोजा जाता है और वापस लैब से लैंड को वो ट्रांसफर होती है। और अब तो जो हमारी सरकार है वो निरंतर प्रयासरत है, भले ही वो विकसित कृषि संकल्प अभियान हो या जो किसानों के साथ जुड़कर बैलेंस फर्टिलाइजेशन का जो अभियान चलाया है अभी इस वर्ष, तो उसके थ्रू हम जो ग्रामीणों तक पहुंच रहे हैं, युवाओं तक पहुंच रहे हैं, महिलाओं तक पहुंच रहे हैं और ICAR का और जो ICRISET का जो 50 वर्ष की जो ये गोल्डन जुबली है उसमें जो युवा और महिला किसान है उनको सम्मान मिल सके उस पे बड़ा एक फोकस है।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने युवा और महिला किसानों की बात की, थोड़ा सा छोटे और सीमांत किसानों की अगर हम बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन का असर भी उन पर जाहिर सी बात है पड़ता ही है, तो महंगी तकनीक भी है और जानकारी की कमी की भी बात कह सकते हैं हम, संसाधनों की कमी है, तो ये सारी जो बातें हैं इन पर अगर थोड़ा सा हम फोकस करें तो कैसे इनसे निपटा जा सकता है?
0: छोटे किसानों के लिए हमारे संस्थान है या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ICAR और IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, निरंतर प्रयासरत है छोटी मशीनरी, किसानों के लिए कम लागत वाली तकनीकियां, संरक्षण कृषि जिसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, जीरो टिलेज या नो टिल फार्मिंग भी बोला जाता है, जिसमें बिना जुताई किए ही खेती करें, फसल अवशेषों को जलाए नहीं, उनको खेतों में ही उपयोग करें ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़े और जो जलवायु को प्रदूषण होता है उसका नुकसान होता है उन सबको बचा जाए। तो स्मॉल स्केल मशीनरी, कम लागत वाली जो सस्ते तकनीकियां हैं उनका विकास हम निरंतर कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारा देश तो छोटे किसानों का देश ही कह सकते हैं, तो उनके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और जुड़ के और खेतों में काम कर रहे हैं हमारे किसान वैज्ञानिक मिलकर साथ में, और जो तकनीकी का विकास हो रहा है उसी का परिणाम है कि आज हम दुनिया में धान उत्पादन में 1 नंबर पर पहुंच चुके हैं, हम फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंट है, आज हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं यानी कि जो हमारे अनाज होते हैं उनमें ज्यादा सांद्रता में पोषक तत्व हो उसकी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग की बात कर रहे हैं और डिजिटल एग्रीकल्चर और जो एक मौसम सेवा है जिसमें किसान मौसम आधारित तकनीकियों से जुड़ा है, निरंतर हम प्रयासरत हैं कि हमारी तकनीकी उन तक पहुंचे, जिसमें हमारे जो सोशल मीडिया सहित जो पुराने प्लेटफॉर्म भी थे उन सब का उपयोग करते हुए हम किसानों से सीधा जुड़े हुए हैं।
1: डॉक्टर वर्मा, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे शुष्क क्षेत्रों में कृषि की नई संभावनाओं और जलवायु अनुकूल समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR IARI में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

कहते हैं कुछ सुर यादों को छू जाते हैं तो कुछ नगमे दिल को बहला जाते हैं। रात चाहे कितनी भी खामोश हो, गीतों के साथ खूबसूरत बन ही जाती है।

कहते हैं दो दिल जब करीब आते हैं तो फासले खुद ब खुद मिट जाते हैं। बिन कहे जो एक दूजे को समझ जाए शायद वही रिश्ते मोहब्बत कहलाते हैं। एक दिल की धड़कन जब दूसरे दिल को सुनाई दे तो समझो मोहब्बत ने दस्तक दी है। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बस एहसासों से बनते हैं।

इन फूलों में छुपा दिल का अफसाना है। खुशबू पहुंचे आपके दिल तक मेरी बस इतना सा मोहब्बत का नजराना है। कुछ फूल महज फूल नहीं होते, उनमें किसी की याद और प्यार छुपा होता है। और जब कोई दिल से फूल भेजे तो हर पंखुड़ी में एक खूबसूरत एहसास होता है।

लता मंगेशकर ते मुकेश कुमार दी आवाज़ च सुन रहे सी खूबसूरत गीत। कहते हैं कागज़ पर लिखे कुछ अल्फाज ही तो थे, मगर उनमें छुपे एहसास बेहिसाब थे। हर लफ्ज़ में थी किसी की मोहब्बत, हर ख़त में दिल के कुछ ख्वाब थे। कभी ख़त भी दिल की आवाज़ हुआ करते थे, लफ्ज़ों में छुपे जज्बात हुआ करते थे। आज संदेश पल भर में पहुँच जाते हैं, मगर वो इंतज़ार कहाँ, वो एहसास कहाँ। आओ अगला गीत सुनते हैं, आवाज़ देती है मोहम्मद रफ़ी ने।

बस मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। आओ इस प्रोग्राम दा आखिरी गीत सुनते हैं। आवाज दी आशा भोसले ने और गीत दे बोले, जिंदगी एक सफर है सुहाना।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभाव बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण कंपनी राइड भारत की कंपनी टेक मी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2 दिन के सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित 11 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया

0: नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि कई अन्य नेता कल राजधानी पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर चर्चा के साथ होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन तीन विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्न पत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा आज हुई। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
1: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. India is all set to host the 18th BRICS Summit beginning this Saturday at Bharat Mandapam in New Delhi. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, and Vietnam will participate as the BRICS partner countries.

0: BRICS collectively represents around 49% of the world's population and about 40% of global GDP. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan will participate in the summit. Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will also participate. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Minister of Foreign Affairs of Saudi Arabia Prince Faisal bin Farhan Al Saud will also participate in the summit. The presidents of Russia and Brazil are set to arrive in the national capital later tonight to participate in the summit. The president of South Africa is set to arrive tomorrow morning. Presidents of Iran, Indonesia, Egypt, Philippines and Burundi, Crown Prince of Abu Dhabi, Prime Ministers of Malaysia and Ethiopia are scheduled to land in New Delhi tomorrow. The BRICS Summit 2026 will get underway on Saturday with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Prime Minister Modi today spoke to German Chancellor Friedrich Merz. In a social media post, the Prime Minister said as India and Germany celebrate 75 years of their diplomatic relations, both the countries reaffirmed their commitment to further strengthen strategic partnership across trade and investment, defence, clean energy, advanced technologies and talent mobility. Union Home Minister Amit Shah today met eminent philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi. They discussed strengthening cooperation in social development, irrigation, cooperatives, natural farming including millets and solar energy. In a social media post, Mr. Shah said India cherishes its bond with the Aga Khan Development Network tied by a shared commitment to human development. The minister also reaffirmed shared commitment to advancing these partnerships for sustainable development and the greater good of humanity. In hockey, the Indian women's team stormed into the semi-finals of the Junior Asia Cup with a ruthless 19-0 demolition of Pakistan in quarter-final at Mochi in China today. And that's the end of this news bulletin.
1: We have it there, a comprehensive, confident, a very convincing victory out there by the Indian women today. 149 for 6 that the Indian women made in 20 overs. Bangladesh was able to put up only 109 for the loss of 7 wickets in their allotted 20 overs. And thereby, the Indian women finally storming into the finals of the ongoing Asia Cup 2026. I'm Sakshi Mandwal, joined over here by my dear friend and co-host for the evening Anand Shivastav. Good evening Anand.
2: Good evening. और इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं, बीसीसीआई कोच रविंद्र सिंह और वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी. आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत.
3: शुक्रिया.
1: ओके, वेरी क्विक क्वेश्चन. सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं को भी बधाई दे दें कि भारतीय महिलाएं अब की बार एक बार फिर से एशिया कप 2026 के फाइनल्स में एंटर कर चुकी है. द 10th कंसेक्यूटिव एंट्री बाय इंडिया, इंडियन वुमेन शुड आई से, इन क्रिकेट इन एशिया कप फाइनल्स. मोना, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?
3: बिल्कुल, 10वां टूर्नामेंट है, 10 बार इंडिया फाइनल में पहुंचा है, तो डोमिनेंस की अगर कोई परिभाषा होती है तो वो यही है. और जिस तरीके से आज खेल दिखाया है भारतीय टीम ने, हम पहले बात कर रहे थे कि रन में शायद हम पीछे रह गए, लेकिन गेंदबाजों ने वो कमी पूरी कर दी. और स्पिनर्स खास तौर पे यहाँ बात करेंगे, दीप्ति शर्मा की क्या मैच विनर प्लेयर है, फॉर्मेट कोई हो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी वर्ल्ड कप में. और अब भी आप देखिए कि सबसे ज़्यादा 11 विकेट उनके नाम हो गए हैं एशिया कप में भी, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन.
2: जी हाँ, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन दीप्ति शर्मा का. 26 रन देकर उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, साथ ही साथ नंदिनी शर्मा को 2 विकेट मिले, दोनों विकेट उनको आखिरी 2 गेंदों पर मिले हैं. साथ ही साथ श्री चरणी जो इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस साल भारत की लीडिंग T20I विकेट टेकर हैं, उनके नाम 1 विकेट. और प्रेमा रावत ने भी 21 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया. रविंद्र, देखने में ओवरऑल बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा. एक समय लग रहा था कि हम 10-15 रन पीछे हैं, लेकिन बांग्लादेश कहीं से भी इस रन चेज में टक्कर देता नजर नहीं आया.
4: देखिए, शुरुआत में तो जैसे 2 ओवर निकले थे, 3 ओवर निकले, तो ऐसा लग रहा था कि टक्कर शेष शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास

0: एक ट्रंप कार्ड है, तुरुप का इत्ता है श्री चरनी। ये बॉलिंग एनालिसिस शायद उसके ज्यादा विकेट्स नहीं मिले हैं, लेकिन जो चार ओवर में 14 रन और एक मेडन है, एक मेडन T20 में होना बहुत बड़ी बात है। और ये जो बॉलिंग दिखा रहा है ये पूरे मैच को पलट देती है। श्री चरनी इस समय एक स्पिनर सारे अच्छे हैं, लेकिन जो श्री चरनी बॉल कर रही है वो वाकई उसको लेवल बहुत ऊपर है। इसकी वजह से आपको अच्छी अच्छी टीमें इस समय धराशायी होती दिख रही है
1: जी। और इसी बात को थोड़ा आगे लेके भी जाए तो बांग्लादेश की जो क्रिकेट में मतलब बांग्लादेश के क्रिकेटर्स हैं उन्होंने शुरुआती फेज में हम देखेंगे पहले 6 ओवर्स के अंदर कोशिश जरूर करनी चाहिए थी कि एक फास्ट अटैक के थ्रू अग्रेसिव क्रिकेट से इनको लीड दिलवा सके, बट दे वर नॉट एबल टू स्टिक टू दैट मोमेंटम एंड पेसिंग। कंटिन्यूअस विकेट लॉस अफेक्टेड द बांग्लादेशी वेमेन वेरी स्ट्रांगली टुडे मोना।
2: बिल्कुल, आप देखिए कि 4 विकेट निकल चुके थे, 70-75 रन का स्कोर था जब टीम का, और शुरुआत में लगा था कि एक दो अच्छे स्ट्रोक्स लगाए थे, खासतौर पे जो दूसरे तीसरे ओवर में एक चौका आया था ज़बरदस्त, और भारतीय खिलाड़ियों से भी कुछ कैच छूटे, पहले प्रतिका ने कैच छोड़े, उसके बाद एक कैच

0: स्ट्रॉन्गली टुडे मोना।
1: बिल्कुल, आप देखिए कि चार विकेट निकल चुके थे, 70-75 रन का स्कोर था जब टीम का, और शुरुआत में लगा था कि एक दो अच्छे स्ट्रोक्स लगाए थे, खासतौर पे जो दूसरे तीसरे ओवर में एक चौका आया था ज़बरदस्त, और भारतीय खिलाड़ियों से भी कुछ कैच छूटे, पहले प्रतिका ने कैच छोड़े, उसके बाद एक कैच बाद में भी छूटा, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये फील्डिंग लैप्सेस भारी पड़ जाए या बांग्लादेश के बैटर्स आज अच्छा खेल जाएंगे, लेकिन वो जो नियमित अंतराल पे उनके विकेट गिरते रहे और वो मोमेंटम बन ही नहीं सका, जिसको कहते हैं कि 150 रन भी अगर आपको बनाने हैं तो आपको एक एंकर चाहिए जो पारी को संभाल के खेल सके और दूसरे छोर पे बल्लेबाज को खुलकर खेलने की आजादी दे। वो कहीं नजर नहीं आया, गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेल के बांग्लादेशी बल्लेबाज आउट होते चले गए।
2: इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आप कहां से बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं?
3: मेरा गांव है जी पुराना, जिला फाजिलका, पंजाब से बोल रहा हूं, कुलदीप जी।
2: जी बताएं।
3: मैं पहले तो सब देशवासियों को अपनी जो टीम है वुमेन टीम है फाइनल में पहुंची है उसके लिए बधाई देता हूं जी, और आज तो ना शेफाली वर्मा ने वीरेंद्र सहवाग की याद दिला दी हमें जी।
2: ये कह रहे हैं शेफाली वर्मा ने जिस तरीके की बैटिंग की, इनको वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी की याद आ गई।
4: बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपको याद आई, वीरेंद्र अच्छी बैटिंग करी उन्होंने, चाहे दो तीन चांसेस मिले लेकिन वाकई अच्छी बैटिंग करके उन्होंने टीम को स्कोर को 150 तक पहुंचाया, नहीं तो टीम का स्कोर लग रहा था कि 125-30 पर ही खत्म हो जाता है, लेकिन अगर लेकिन ऐसी बैटिंग उनसे कंसिस्टेंटली चाहिए, क्योंकि 6 ओवर जो पहले पावर प्ले के 6 ओवर होते हैं वो बहुत क्रुशियल होते हैं। हमने पहले बताया था कि बांग्लादेश को भी पहले 6 ओवर में 40 रन तो चाहिए अगर एक अच्छा स्टार्ट मिलता है, क्योंकि स्पिनर्स के बाद गेम को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, इसलिए वो मीडियम पेसर्स को अटैक भी कर रहे थे शुरू में कि इनको जितने ज़्यादा रन बटोरे जा सके, लेकिन वो श्री चन्नी ने वो तीसरे ओवर में आके वो गेम को पाछा पलट दिया।
0: सवाल मेरा आपसे मोना ये होगा कि हम बात करते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट में काफ़ी बेहतरी हुई है ओवर द ईयर्स, इजाफा जिसको हम कहते हैं उनके खेल के प्रदर्शन में भी, लेकिन क्या आपको सही मायने में दिखता है दैट द बांग्लादेशी वुमेन्स क्रिकेट हैज़ इवॉल्व फॉर द बेटर और देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट इन बांग्लादेशी वुमेन क्रिकेट?
1: देखिए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे टूर्नामेंट नहीं जीते जा सकते, बेहतरी हुई है, उनके पास कई अच्छे खिलाड़ी आए,

0: हेलो।
1: हेलो कविता जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, होर की हाल चाल ने? कौन बोल रहे ने? केड़ी जगह तू?
1: बहुत वधिया बहुत वधिया, अपने बहुत वधिया पेश कर रहे हो। बोल रहा जी, दूरदर्शन बैठक
0: हाँ जी
1: मंगलू
0: बेटू,
1: स्टूडियो अंदर।
0: बेटू जी होर सुनाओ, ठीक ठाक हो?
1: हाँ जी, वधिया वधिया। मैं तो नंबर ला रहा पंजाब जी।
0: ते दसो केड़ा गीत सुनाइए।
1: अरे राज प्रकार का सुनना सुना रहे हो।
0: क्या बात है जी, ते लो जी फिर एंजॉय करते हैं गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: ओके जी, बाय बाय।
0: ओके।
2: Yeah, is this where the party's at? Yeah.

जी दोस्तों, तुसी इंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम सौगात अपने दोस्त कमल दे नाल आकाशवाणी पंजाब दे। ते तुसी सानू कॉल कर सकते हो, साडा नंबर है 0131-4242-141। ते अपने फरमाइशी गीतां दी फरमाइश सानू दस सकते हो, ते असी जरूर जरूर उन्हूं पूरी करन दी पूरी कोशिश करांगे। ते जद तक तुसी पहुँचते हो ते साडे वलों गीत संगीत इदां ही चलदा रहेगा तुहाडे नाल।

0: हेलो,
1: सत श्री अकाल जी।
0: सत
1: जी
0: श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तू? मनजीत
1: मनजीत कौर बोल रही हूँ, दिल्ली तो। हाँ
0: जी, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो?
1: जी, ठीक है जी।
0: चलो वधिया जी। दसो फिर,
1: तुसी
0: केड़ा
1: सुनाओ।
0: गीत सुनाइए? बहुत वधिया
1: अरजीत हरमन दा सुना दो जी।
0: जो जी, धन्यवाद जी कॉल करने दे लई।

0: हाथी तेरे छापा छले बाही तेरे चूड़ा, हाथी तेरे छापा छले बाही तेरे चूड़ा। नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा, नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा।
1: कोट पेंट तू पाके फिर लिखन न जाने उड़ा, कोट पेंट तू पाके फिर लिखन न जाने उड़ा। वे मैं कद पाया सी प्यार तेरे नाल गूड़ा, वे मैं कद पाया सी प्यार तेरे नाल गूड़ा।
0: शर्म न कर दी झूठ बोल दी लेके छापा छले, लुटके सब कुछ लेके जट दा कख रहा ना पले, लुटके सब कुछ ले...

हासे पाने भी तू एवें मुँह कर लेना मोटा, लड़न मरन ते उतर आउना जो पुतरिया छोटा, लड़न मरन ते उतर आउना जो पुतरिया।

समस्त धार्मिक ग्रंथां अनुसार सृष्टि नूं साजण वाला अकाल पुरख सर्वोच्च शक्ति अते सर्वोच्च हस्ती है, जिस दा अंत नहीं पाया जा सकता। वड्डे वड्डे ऋषि मुनि देवते भी उस दा अंत नहीं पा सके। उस दियां वड्याईयां वड्डियां ने, उस दी कथा अकथ है। उस दा जस गायन ही नहीं कीता जा सकता। उस दी महिमा बयान तो परे है। मनुख अल्पमत्ता धारनी है, वह असीम प्रभु दे विस्तार नूं की बयान कर सकता है। प्रथम गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी बिलावल राग विच उचारे शब्द विच उस वड्डे सुल्तान दी उपमा करन दी असमर्था जाहिर करदे ने कि हे प्रभु, तेरी उपमा करके मैं तेरी कोई सिफत नहीं कर रहा। इता इंज है कि जिवें तू बादशाह है ते मैं तैनू मियाँ आख रहा हाँ। ए वी मेरी समर्था विच नहीं है। हे प्रभु, जिन्ना को तू बल दिन्ना है, मैं उससे सोजी नाल तेरे गुण गाउण दी कोशिश कर लैन्ना हाँ। मेरे पासों मूरख कोलों तेरे गुण बयान नहीं हो सकते। हे प्रभु, तू आप ही मैनू सोजी दे कि मैं तेरी सिफत सलाह दी बरकत सदका तेरी रजा विच टिक सकां। ये जो कुछ वापरिया है सब तेरी माया है, तेरी ही दयानतदारी है। हे प्रभु, मैं ज्ञानहीन हाँ, तेरा अंत नहीं जान सकिया। तेरी की सिफत आखां, उते अकथ है, मैनू सोझी नहीं है। तेरा स्वरूप बयान तो परे है। जितनी तू बुद्धि दित्ती है उन्नी ही मैं उस्तत कर सकिया हाँ। तेरा दास भक्ति तो सखना है, फिर भी प्रभु तू मेरा खसम है। तू ही शरण आए दी सहायता कर सकता है। तू सुल्तान कहा हो मिया, तेरी कवन वडाई, जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूरख कहण ना जाई। इस शब्द का गायन किया बीबी जसपिंदर नरूला ते उन्हां दे साथियां ने।

0: कहाँ हो मिया, तेरी कवन वडाई, जो तू दे सो कहा स्वामी, मैं मूरख कहण ना जाई। इस शब्द दा गायन कीता सी बीबी जसपिंदर नरूला ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख सबना कला समरथ है, सर्ब सुखां दा दाता है, जो उसनू सेवदे हन उन्हां दे लई ओही आसरा है। ए ज्ञान सच्चा गुरु जे अरदास सुन के कृपा करदा है, ता ही इस मस्त कारज रास हुंदे ने। पैरो राग विचले शब्द विच पंचम गुरु फरमाउंदे ने कि जिन्हां ने समरथ प्रभु नू मन अंतर विच त्याया है, उन्हां दे सबे पै दूर हो जांदे हन। उसका अटल हुक्म सारी सृष्टि उपर आयत है ते सब कुछ उसकी रजा अनुसार हो रहा है। परमेश्वर उपमा रहत है ते सच्चा गुरु उसे दा ही रूप है, जिसने इस ब्रह्म ज्ञान नू माणिया है, उन्हां दे अंदर ही प्रभु दा वासा है। ऐसे रोशन हिरदिया विच ही पार ब्रह्म दा वासा हुंदा है। ऐसे गुरदेव नू सदा नमन है, उस तो सदा बलिहारे ते उसते चरण शरण दी लोचा रखदे हुए नाम जल ग्रहण करके जीना ही सदीवी जीवन है। सुनदिया एडवोकेट किरपाल सिंह होरां पासों वार्ता, सब ते वड समरथ गुरदेव।
1: ये पावन पंक्ति पंजवें पातशाह शहीदां दे सिरताज बाणी दे पुंज वड पर उपकारी सिख धर्म दे पहले शहीद बाणी के बोहित पंजवें गुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा उच्चारण कीती पावन बाणी दे राग भैरव विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 1152 विखे सुशोभित है। इस संसार विच मनुख हर वेले किसी न किसी समर्थ का आसरा लभदा रहिंदा है। कोई ताकतवर अधिकारी नूं समर्थ मंनदा है, कोई किसी धनवान नूं, कोई किसी राजनीतिक नेता नूं, अते कोई अपने संबंधी जां विशेष मित्र का आसरा तकदा है। पर गुरु साहब की उक्त बाणी सानू साफ अते स्पष्ट दसदी है कि असल समर्थ तां गुरदेव ही पिता परमात्मा हन, क्योंकि अगलियां पंक्तियां इस गल नूं होर स्पष्ट करदियां हन, जिवें कि सब ते वड समर्थ गुरदेव, सब सुख पाई तिस की सेव रहाओ। इस तरह ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन अंग 552 ते राग गुजरी दीवार विच गुरु अर्जन देव जी गुरु महिमा का वर्णन करते हुए फरमाते हैं, महिमा कही न जाए गुर समरथ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अपेव। भाव समरथ गुरु की महिमा बयान नहीं की जा सकती। विचारन वाली गल है कि समरथ का असल अर्थ की है। समरथ का अर्थ है कि जो सब कुछ करन दे योग होवे, जिस अगे कोई रुकावट ना होवे, जो असंभव नू संभव कर सके। मनुख की समर्था सीमित है, असी चाहते हुए भी सब कुछ नहीं कर सकते, असी चाहते हुए भी हर दुख टाल नहीं सकते। पर गुरबाणी कहती है कि सर्व कला समर्थ प्रभु है, जो हर कला विच समर्थ है। इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 586 ते वड़हंस की वार विच सोढ़ी सुल्तान पातशाह चौथे गुरु धन धन श्री गुरु रामदास जी बख्शिश करते हैं कि समर्थ गुरु की यह भी वड्याई है कि वह नाम की दात दे के अपने प्यारियां दे सिर ते हाथ रखता है अते हरि दे नाम नाल जोड़ता है। इन्हां पंक्तियां विच गुरु साहब फरमाते हैं, सो सतगुर सेवहो साध जन जिन हर नाम दृढ़ाया। यही बचन तीजे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी राग रामकली विच पावन अंग 917 ते फरमाते हैं कि सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। विचारन योग है कि गुरदेव क्यों सब तो वड्डे अते समरथ हन, क्योंकि गुरदेव सानू सिर्फ उपदेश ही नहीं देंदे, सगो साडी जिंदगी दी दिशा ही बदल देंदे हन। जिथे मनुख दी सोच खत्म हो जांदी है, उथे गुरदेव दी कृपा शुरू हुंदी है। असी अक्सर कहिंदे हां कि हुण तां कुछ नहीं बन सकता, जां हुण तां कुछ नहीं हो सकता, पर गुरदेव फरमाउंदे हन कि हे इंसान, तू प्रभु दा सिमरन कर, बाकी सब कुछ प्रभु ते छड्ड दे। वो आप ही करन करन समर्थ है अते अपने जीवां दी संभाल आप ही कर लैंदा है। इसे तरह जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंग 1405 ते बड़े सत्कार नाल बल भट्ट चौथे पातशाह धन धन श्री गुरु रामदास जी की उसत करते हुए वड्याई करते हैं कि जह प्रसाद समरंथ ची की तप्त मिटावै, जह समरंथ रिद सिद्ध नवनिध पावै, भाव सतगुर दाता वंडदा है, वह सच की मूर्त है।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तू जिनी सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सचता तिनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सचो साया मूरख सच न जानी मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया।

आई रहे बेबाणी मड़ी मसाणी आंदना जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसन दिसे ते नहि केवल हउ में शब्द जलाए।

संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गाव, करे गावावे मंगे मोख द्वार, जति सदावे जुगत ना जाने।

बर्थडे। सवैये महल्ले पंजवे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद, सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुर्मत मल नासी, सतगुर चरण कवल रिद तारंग, गुर अर्जन गुण सहज विचारंग, गुर रामदास कार कियो प्रगासा, सगल मनोरथ पूरी आसा, तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सुजात बखाण्यो, भगत जोग कौ जैतवार, हर जन को उपाया, शब्द गुरु पर काश्यो, हर हृदय बसायो, गुरु नानक अंगद अमर लाग, उत्तम पद पाया, गुर अर्जुन कर गुर रामदास, भगत उत्तर आया, बड़ भागी उन मानिया, रेत शब्द बसाया, मन मानक संतोखिया, गुर नाम

गुड़ अर्जुन कर गुड़ रामदास अनपौ ठहराया जनक राज बरताया सत युग आलीना गुर शब्द मन मानिया अप तीज पतीना गुर नानक सच नीम था सत गुर संग लीना गुर अर्जुन कर गुर रामदास अपरा

0: खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचरयो बिमल बुद्ध सतगुर सामानो आजो नहीं संभव्यो सो जस कल कवियन बखाने ओ गुरु नानक अंगद वर्यो गुरु अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जुन वर्यो पारस परस परमान सद जीवन अर्जुन अमोल आजो नहीं संभो पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंबो अगे गहन प्रम प्रांत दहन शीतल सुखदातो असंभो उद्वेयो पुरख पूर्ण विदातो नानक याद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो।
1: जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुरपुरा पायो बड़ भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै भंजन पर पीर निवारण कल सहार तोय जस बक्ता कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता त्रम तीर गुरमत गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर साम्यदार अहमेव निवारण महादान सत गुर ज्ञान मन चाव न हुटा सतवंत हर नाम मंत्र नव निज नंद खुटा गुर रामदास तन सर्व मैं सहज चंदोआ तान्यो गुर अर्जन कल उच्चरा तेरा जोग रस जान्यो।
2: पै निर्भो मान्यो लाख में लख लखायो अगम गोचर गत कबीर सतगुर परचायो गुर परचे परवान राज में जो कमायो तन तन गुर तन पर सरसो पर परायो गुर गम परमान अजर जरयो सर संतोख समायो गुर अर्जुन कल उचरा ते सहज जोग निज बायो अम्यो रसना बदन बरदात लख अपार गुर सूर शब्द होमे निवार्यो पंचाह निदर्यो सुन सह निज कर सहार्यो हर नाम लाग जाग उदर्यो सतगुर रे बसायो गुर अर्जुन कल उचरे ते जन के कलस दिपायो।
3: सुरठे गुर अर्जुन पुरख प्रमाण पार्थो चल नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवार्यो पौजल सायर सेत नाम हरि का बह था तो सतगुर संगेत नाम लाग जग उदर्यो जगत उदाहरण नाम सतगुर

0: चंदन परस के मथुरा अमृत बैण मूरत पंच प्रमाण पुरख घोर अर्जुन पिखो नैण।
1: सत रूप सत नाम सत संतोख तरयो उर आद पुरख पर तख लिख्यो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जगमगे तेज भुव मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन्मुख रहो कल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतर हो।
2: तेह जन जाचो जगत्र पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम सियो परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगे हो बासना ते बाहर पै देखियत धाम सियो अपर परंपर पुरख सियो प्रेम लागे हो बिन भगवंत रस नाही और काम सियो मथुरा को प्रभ सब में अर्जुन गोरे भगत कहे ते पाए रहो मिल राम सियो अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महाशिव जो करी फुन भेद बिरंच विचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारण को गुरजोत अर्जुन माहे तरी।
3: जग और न जाहे महात्म में अवतार उजागर कौन कियो तिनके दुख को टिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद्धत ते मथ चुके रे मन भेद विभेद न जान बियो पर हृदय गुर अर्जुन के हर पूरन ब्रह्म निवास लियो प्रताक्ष हृदय गुर अर्जुन के हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
0: जब लो नहीं पागल ला रहे उदय तब लो ब्रह्म ते फिर ते बहुत आयो कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार।

अंगद पयो तत् शो तत् मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत छत।

0: काल समुंदर पै रूप प्रगट हरे नाम उदाहरण बस है संत जस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जानो पहत है समसर सोई तरन गगन नव खंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जुन पर तख हर।
1: देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंघासन दियो श्री गुर तै बैठायो रहस कियो सुर देव तोह जस जय जय जंपै असुर गेते।

0: भाग पापिन पीतर कंपे, काटे सो पापिन नरों के गुर्राम दा जिन पायो, शतर सिंहासन प्रथमे गुर अर्जन कौ दे आयो।
1: अजय गंग जल अटल सिख संग सब नावै, नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावै। अजय चवर सिर टुलै नाम अमृत मुख लियो, गुरु अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पह गयो, हर बंस जगत जस संच रहो, सो कवन कह श्री गुर मोयो।
2: नाम अवखद नाम आधार, अर नाम समाध सुख, सदा नाम निशान सोहै, रंग रतो नाम स्यों, कल नाम सुर नर बोहै। नाम परस जिन पायो, सत प्रगटो रव लोए, दर्शन परस गुरु के, आठ साठ मजन हो हम।

0: परम पपुले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुने हो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरनाई
1: सो कहो तल गुर सेविया अहनस सहज दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाम दी नूर अरसह कुरसह तद डठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठिया सोही है सबनांद सजन सच्चा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठिया सोही है सबनांद सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला चौथा कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी

जो हर शिव संत भगत तिनके सब पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कह न सको बनवारी। हम पापी पाथर नीर डुबता कर कृपा पाखण हम तारी। जन्म जन्म के लागे बिख मोरचा लग संगत साध सवारी। जा कंचन बसंतर ताया मल काटी काटत उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हर और तारी। हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर होम मारी। हर हर आगम आगाद बोदा अपरंपर पुरख अपारी। जान का कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सवारी। हर हर आगम आगाद बोदा अपरंपर पुरख अपारी। जान का कृपा करो जग जीवन जन नानक पाज सवारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो हर सेवह संत भगत तिनके सब पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत।

पौड़ी सतगुरु बिठो वारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिनकार उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से वंजारिया सतगुरु है बोहिथा विरला किन विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा।

0: कोने में आपको पर कोने में ना कोई तारत राजू तो लिए में सुगोरा हो अपराधी दुलाने में जो हंता मृगा है शीश नया क्या थी है जार देश दे जा।
1: महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूज सबगल समाधन मुख झूठ बिभूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गल माला तितल लाटंग जे धोती वस्त्र कपाटंग जे जान सब्रह्मं करमं सोक्त निश्चो करमं कहो नानक नहचो त्यावे विण सतगुर वाट न पावे।

0: पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही किता पावना हुक्म के मन पाम दे रहे पीड़ा गया जावना नंगा दो जग चालिया ता दिशा खरा डरावना कारोगण पछोतावना करोगण पछोतावना।
1: राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवी। प्रथम भगवती स्मर कै गुरु नानक लईते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास। राम दास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरे घर नौ निदया वैताय। सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी जिन्ना सिंघां सिंघनिया ने धर्म हेत सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े। आर्यां नाल चिराए गए गुरद